0: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly.
1: हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।

0: लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी। सरकार ने SIT जरूर बनाई है, लेकिन क्या SIT को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। CCTV के फुटेज गायब है, जो खबरें आ रही हैं आप ही लोग दिखा रहे हो,
1: कुछ भी नहीं दिख रहा है। पता नहीं किसके सर पर गड़ा फूटेगा। भगवान के घर चोरी हुई है, भगवान के घर की चोरी और डकैती जो है निश्चित रूप से खुलनी चाहिए। लोगों की आस्था के ऊपर चोट है, ये सरकार की माया है। ये सरकार जाने ये क्या कर रहे हैं, और SIT का क्या मायने है बिना FIR के, उसका कानूनी पहलू क्या है, ये तो वही बता सकते हैं, इससे पहले कोई नहीं बता सकता है। ये सरकार जिस तरह से, जिस राह के ऊपर सरकार चल रही है, उस राह के ऊपर जवाब सरकार दे सकती है।
2: ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिनका मंदिर आंदोलन से संबंध नहीं है, जो लोग वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके दल के इशारे पर कार्यकर्ताओं पर गोली चली थी, वो लोग आज आरोप लगा रहे हैं जो कहते थे पतंगा पर नहीं मारेगा, वो लोग आज आरोप लगा रहे हैं जो कार्यकर्ताओं के तप तपस्या और बलिदान के बाद निर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से आरोप लगाते आए। जब निर्माण हो रहा था तो चंदा की बात करते थे, जब निर्माण हो रहा था तो कहते सरकार खर्चा कर रही, जब प्राइवेट बनाने लगे तो कहने लगे चंदा चोरी हो गया।
3: 26 जनवरी 2021 के अंदर हम लोगों ने पूरे सिंधी समाज ने, पूरे हिंदू, आई मीन नॉट ओनली हिंदुस्तान, करीब करीब 10-12 कंट्रीज से हमारे भाइयों ने 200 किलो चांदी डोनेट की, आदरणीय चंपत राय जी के अयोध्या के परिसर के अंदर ही। दिल्ली में उनसे मुलाकात आई थी, उन्होंने अयोध्या बुलाया, तो 26 जनवरी को हम सब लोग जाकर के 200 किलो चांदी उनको भेंट की और दान दिया। तो हम लोगों ने कभी पूछा नहीं कि उस वक्त रसीद ले नहीं पाए हम लोग, बोले वो पहले चेक करेंगे, सब कुछ होगा उसके बाद में आपको अपडेट किया जाएगा। 6 साल हो गए थे, ये तो TV के ऊपर न्यूज़ देखी तो हमें पता चला। तो
4: मतलब आपको रसीद भी नहीं दी गई है?
3: जी नहीं, रसीद वगैरह हमें कुछ नहीं है, और कहाँ यूज़ किया गया है वो भी पता नहीं है।
5: On that note, let's bring you the latest update from West Bengal now. Political controversy has erupted in Kolkata after the Kolkata Municipal Corporation renamed Surawardi Avenue as Gopal Mukherjee Road. The state government has hailed the move as a historic correction. In fact, Shuvendu Adhikari, the chief minister, said the name change rectifies a long-standing historical wrong and honors Gopal Mukherjee for protecting Hindus during the Calcutta riots. However, the opposition has accused the government of distorting history. You see, the Trinamool Congress argues that the avenue was named after noted physician and former Calcutta University Vice Chancellor Hassan Surawardi and not Hussain Shaheed Surawardi, the controversial former Premier of Undivided Bengal. Meanwhile, the Congress has also accused the West Bengal government of confusing two different Surawardis.
6: Sare badle gaya, jaisa ki Britishon ke naam par jo naam tha wo badal diya gaya hai, aur baki jo hai, jo desh ka virodh kiya hai, ऐसे और सांप्रदायिक तत्व जो डिवीजन किया है उनका नाम तो नहीं रहना चाहिए।
7: देखिए, जब कोई नाम होता है ना, उसका पीछे कोई हिस्ट्री, कोई इंसिडेंट, ये होता है। एक बार नाम पूरा चेंज कर देना, जिसका नाम पे रास्ता नई तरह से रखना है वो तो हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी का नाम जब हटाने का बात आता है तो पूरा इरेज करने से ये हिस्ट्री का ऊपर इम्पैक्ट हो जाता है। पास्ट को तो जानना चाहिए, जब नाम रखा गया था कोई ना कोई तो उसका कारण था।
8: सुराबुर्दी तो पश्चिम बंगाल में दंगा कराया, सुराबुर्दी पश्चिम बंगाल का हालत खराब किया, इसीलिए ऐसा सुराबुर्दी नहीं चलेगा। जो द ग्रेट कलकत्ता किलिंग से जनता को बचाया वही गोपाल मुखर्जी, जिसका नाम इतना दिन छुपा के रखा था कांग्रेस कम्युनिस्ट ने, गोपाल मुखर्जी नहीं होता 10,000 जो हिंदू मारे गए, वो कम से कम 40,000 हिंदू का मौत होता। गोपाल मुखर्जी उसका सारे क्लाब का वाहिनी लेके उन लोगों ने जो दंगा से रक्षा कराया हमारा माता बहन को, जनता को, इसीलिए हिंदू बचा।
5: All right, moving on to other news we're tracking.

0: Vikas Aghadi or India Alliance. They very well knew that Congress Party was one of the leading parties in this alliance, both at the center and in the state, which is why the statements saying that Shiv Sena went against its ideology, something that was a reiteration of what Eknath Shinde said in 2022, becomes slightly weaker conversation point here in 2026, especially given the fact that Congress did put its massive strength behind these MPs, especially in Vidarbha and Marathwada regions, as a result of which they were victorious. But a major question that lies in front of us is, what will be the plan of sustenance for Uddhav Thackeray? Only a couple of days back, Uddhav Thackeray put down a plan where he made it very clear that he will travel and tour all of these places from where the MPs have defected. He will go and hold public rallies as a show of strength. But at the same time, these MPs have also made it very clear that they will also go to their constituencies back and will try to hold counter
1: what
0: show of strength.
1: What are these rebel MPs really today, saying, is the big question, Anuj? Sanjay Jadhav, the rebel MP, spoke with our colleague Tanushree. Let's just listen in to what he had to say to our colleague Tejri.
2: नहीं ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ये कैसा है कि हमारे यहाँ पे नांदेड़ वर्धा का काम चल रहा है रेलवे का.
1: हाँ.
2: अब वो काम को गति देने की है, दो साल से हम उसके पीछे लगे हैं. बहुत सालों से वो प्रोजेक्ट चालू है, 15 साल से प्रोजेक्ट चालू है
1: जी.
2: उसके बाद में किसानों की आत्महत्या बड़े पैमाने पे है.
1: हाँ.
2: उसके बाद में विकास निधि लोगों का क्या है कि 2200 गांव है कहीं कहीं लोकसभा. अब 2200 गांव के लोग आते हैं, वो बोलते हमको फंड दो, हमारे गांव में ये करो, हमारे गांव में वो करो. कुछ ही नहीं कर सकते हम.
1: क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास फंड नहीं, ऐसा आपका कहना है?
2: फंड ही नहीं आता ना, फंड देते ही नहीं ना विरोधी पक्ष के लोग.
1: और आप लोगों को ये लोग बार बार कह रहे हैं कि आप लोग गद्दार हैं, आप लोगों ने धोखा दिया है, और आप लोग जो चुनाव जीते हैं आप उन्हीं के चेहरे पे जीते हैं, उद्धव ठाकरे के चेहरे पर और शिवसेना यूबीटी के सिंबल पर जीते हैं.
2: नहीं, उद्धव जी के बारे में हमारा कुछ भी बोलना नहीं है. अब वो कैसा है कि लोगों की डिमांड थी, लोग बोलते हैं कि आप विकास करो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम कैसा क्या वोटिंग करेंगे, लोगों को कैसा समझाएंगे.
1: लेकिन नाराजगी किसी, संजय दादा, नाराजगी किस बात को लेकर थी?
2: नहीं नहीं, नाराजगी नहीं किसी की.
1: तो आप पे कोई दबाव बनाया गया, ऐसा आरोप शिवसेना यूबीटी के लोग लगा रहे हैं कि आप पे एजेंसीज का दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया?
2: नहीं नहीं, हमारे क्या, हमारी प्रॉपर्टी उतनी नहीं है क्या एजेंसी के दबाव में.
1: तो फिर अचानक इतने सालों में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, अचानक ऐसा क्या हुआ फिर?
2: सब एमपी लोगों का निर्णय हो गया कि भाई हमको रुकने को ऐसा करना है, इसलिए सब किए हमने.
1: अभी आदित्य ठाकरे का भी एक बयान आया है, उसमें भी वो कह रहे हैं कि चुनाव जो है, अब आप लोग यदि बीजेपी के सिंबल पे जीतेंगे चुनाव, लड़ेंगे चुनाव, तो आप हार जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं वो.
2: तो जनता के हाथ में है, वो जनता क्या ठहराती.
1: और आपके सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उद्धव ठाकरे भी जा रहे हैं और वो लोगों से बातचीत करेंगे.
2: वो तो आएंगे.
1: ये भी कह रहे हैं कि आपकी लॉयल्टी और आपकी रेपुटेशन जो है वो सेल पर है, योर लॉयल्टी एंड रेपुटेशन इज फॉर सेल, बिकी हुई है, ऐसा कह रहे हैं.
2: अब वो तो क्या, वो जो बोलना है उनको बोलने दीजिए, हम तो हमारा काम करेंगे.
1: तो आपका मेन रीजन ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं हो रहा था इसीलिए. क्या ये भी शिकायत कुछ एमपीज कर रहे थे कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो है वो आते नहीं थे या मुलाकात करने का वक्त नहीं मिलता था आपसे उनको?
2: नहीं नहीं, हमारा कोई बोलना नहीं, वो उद्धव जी के बारे में कोई बोलेंगे नहीं.
1: तो आदित्य ठाकरे का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गया था?
2: नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कभी बोले नहीं हमको आज तक.
1: तो प्रॉब्लम कहाँ थी दादा फिर?
2: प्रॉब्लम विकास के बारे में ही थी हमारे.
1: तो आज जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लग रहा है कि बीजेपी, मतलब आप जब एनडीए ज्वाइन करेंगे तो विकास होगा, ऐसा आपको लग रहा है?
2: हाँ, हमने तो वही बात उनको पक्की बोले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये दो चार जो प्रोजेक्ट है वो होना चाहिए.
1: तो प्रोजेक्ट के लिए आपने आपने सोचा कि बदलना चाहिए पार्टी?
2: नहीं, विकास के लिए, लोगों के काम के लिए. लोग तो आते ना, बड़ी आशा से लोग आते हैं, गरीब सामान्य लोग हैं.
1: तो फंड क्यों नहीं रिलीज कर रहे थे?
2: वो क्या बोलना मैं.
1: Now let's just also talk about the NDA's power to that two-third majority. Of course, we just heard Sanjay Deshmukh here speaking with NDTV on the matter with my colleague Tejree. But when we talk about that majority mark, as far as Prime Minister Modi's party is concerned, we talk about the BJP, the NDA there, and in comparison to the India Alliance, has been led by Rahul Gandhi and other silhouettes. Let's talk about the numbers that we have at the moment. With the NDA there at 293 and the India bloc at 234, while we have others at 13, so that 200, as far as that two-third mark is concerned, of 360, they're really short by 67. And that is when we do the math. Now, as far as the NDA is concerned, let's just also do the math when it comes to the numbers that are coming about of 313 as far as the NDA is concerned. But India, they're getting the India Alliance, the India bloc there with 214 plus 20. The NCPI, of course, this includes all those rebel MPs from the West Bengal Trinamool Congress, those rebel MPs that have joined the NCPI. So that makes the number go up to about 13. So that two-third mark of 360 is basically short by 47. Now, let's just also, talk about those numbers that are coming in all with 335 for the NDA, but 192 as far as the India bloc is concerned. So we have the India bloc coming in at 192 plus 20, and then the NCPI with 13 there and 22 others. This includes the DMK. So the two-third mark as far as 360 is concerned, that is again short by 25. Now, let's also look at that two-third majority mark that the India Alliance is also, running short here, because we have the NDA coming at 341, India Alliance coming at 186, the NCPI and others at 13, and the DMK at 6. But when we talk about the Shiv Sena UBT faction, and that two-third mark of 360, that is short by 19 here, as we can tell. So both the 360 numbers to turn golden. Well, we have the NDA at 360, but India Alliance coming in at 175, while the NCPI and others coming in at 5 plus 22, but the DMK coming in at 6, and the Shiv Sena of the UBT coming in at 4, the YSRCP at 3, and then we also have the JMM and the NCP of Sharad Pawar coming in at 1, and then we also have the SAD. But that total mark of 360 with the NDA really, needing to touch that very mark, and that is perhaps how it can be possible. Moving on now to get you more news coming in, and this is in regard to the political controversy that's erupted in Kolkata after the Kolkata Municipal Corporation renamed this avenue, this road that has been renamed by the newly elected Chief Minister Suvindu Adhikari. So this Sohrawardi Avenue has now been renamed as Gopal Mukherjee Road, and the state government has hailed that move as a historic correction. The Chief Minister Suvindu Adhikari says that the name change rectifies a long-standing historical wrong and honours Gopal Mukherjee for protecting Hindus during the riots that took place in Kolkata. Now, however, the opposition has accused the government of distorting history, and the TMC there arguing that this avenue was named for after a physician and former Calcutta University Vice-Chancellor and not after a butcher. The controversy that has emerged of the former Premier of the undivided part of Bengal. Meanwhile, the Congress has also accused the West Bengal government of confusing the two Sohrawardis.
3: सारे बदले गए, जैसा कि ब्रिटिशों के नाम पर जो नाम था वो बदल दिया गया है और बाकी जो है जो देश का विरोध किया है ऐसे और सांप्रदायिक तत्व जो डिवीजन किया है उनका नाम तो नहीं रहना चाहिए।
4: देखिए जब कोई नाम होता है ना उसका पीछे कोई हिस्ट्री कोई इंसिडेंट ये होता है। एक बार नाम पूरा चेंज कर देना, जिसका नाम पे रास्ता नई तरह से रखना है वो तो हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी का नाम जब हटाने का बात आता है तो पूरा इरेज करने से ये हिस्ट्री का ऊपर इम्पैक्ट हो जाता है। पास्ट को तो जानना चाहिए, जब नाम रखा गया था कोई ना कोई तो उसका कारण था।
1: Switching tracks now to Uttar Pradesh, the Ayodhya Ram Temple donation controversy is deepening. We have the SIT there probing that investigation as far as, giving its report to the Chief Minister Yogi Adityanath, submitting while its preliminary report on the seventh day of the investigation. They have spent 6 days conducting injuries. These are basically in regard to the inquiries and gathering information as far as the Ayodhya claims that are being made. And while the trust officials and the temple functionaries so far have been reportedly been asked not to leave the temple town of Ayodhya. Investigators are examining allegations linked to donations, missing jewellery, land purchases, procurement processes and financial transactions as well. As political This is basically politics that's playing out, is the claim that is being made, and the focus

0: One of these 9 impersonators, he was held from KRK School Exam Center. Impersonation was happening at multiple exam centers. As we just said, there were 9 impersonators and there were 21 other people involved in the scam, allegedly till now, at least 21 people who were facilitating these 9 impersonators. Arrested impersonators are mostly MBBS students. So these 9 impersonators who've been arrested, most of them are MBBS students. They're currently pursuing their doctorate, bachelor doctorate from medical universities. Suspects are being questioned under the supervision of the STM and the SDPO. The district SDM and the SDPO, they are currently grilling. The suspects are being questioned and grilled under their supervision. Meanwhile, special police teams, as we just pointed out, they also conducted raids at suspected hideouts. So at now 30 people, including 9 impersonators and 21 of them facilitating these impersonators, have been arrested. There are more arrests expected. We cannot say that this was an isolated gang or there are more gangs. Nothing is clear at this point in time. Meanwhile, cops are probing the role of doctors and other associates also. The role of doctors and other associates is also under investigation. There's also an investigation underway, needless to say, to identify the kingpins of this racket. And digital evidence is under forensic review, to say the least. Whatever digital evidence the cops have picked up. Meanwhile, my colleague Prabhakar joins us for more on this straight from Patna. Prabhakar, we laid out how this gang were caught. There have been 30 people, the 30 people believed to have been caught. Please bring us up to pace with the latest. What are the cops looking at right now?
1: See, as we speak, the raids are underway at various locations in Bihar, and the Bihar police has formed an SIT to crack down heavily on this impersonator gang, or the solver gang as they call it. And 30 persons have been arrested so far, including the gang members who were involved in actually breaching this entire re-NEET examination process which happened. And also the solvers, as they are called, or the impersonators who were mainly the medical students enrolled in various medical colleges. They were actually appearing on behalf of the genuine students who were supposed to be there. Now, those students against whom these medical students were actually appearing, they'll also be arrested, and the cases will be lodged against them. So the Bihar, it has come as a big setback, not only for the entire re-NEET examination, which was a much hyped event, and we saw how the Prime Minister waited at the Delhi airport for 45 minutes to facilitate students going to the examination center, or for that matter, the entire machinery of the state and the central government involved into ensuring that this particular examination goes glitch-free. But in a small district in Bihar, which is Sheikhpura, it's a very small district, they're a gang which is known as the Salwar gang, and they basically engage in these kind of breaches for many other examinations, as we are told. So, and they somehow managed to breach, or for that matter, penetrate into this re-NEET examination, which was much hyped. Now, most of them were caught at the examination center because there are multiple layers of screening which happens. But what the administration and the police, Bihar police sources are confirming to us, that there is an involvement of people actually who were part of the entire examination process which was held out here, and they had actually facilitated these gang members to breach or penetrate into the system, so they'll also be nabbed. So by the end of the day today, we'll have much more arrest in this particular case, and hopefully all those involved into this entire process will be caught.
0: Right, some very vital information shared by our colleague Prabhakar there, that the cops are looking at more people within the state machinery, within the apparatus, who are in fact facilitating these 9 impersonators, and more arrests could be expected later in the day. Well, shifting our focus, viewers, you see the Maharashtra political potboiler now has confirmation from the Mahayuti government. This comes as Chief Minister Fadnavis and Deputy Chief Minister Eknath Shinde Maitiu. The duo has confirmed the arrival of the rebel UBT MPs. That's right. You see, posters have been put up by Shiv Sena welcoming Sanjay Deshmukh, rebel UBT MP, in the party. Now, in a conversation with NDTV, Sanjay Deshmukh, he himself confirmed that he is joining the Mahayuti for development of his constituency. That's what he says. Now, this comes after the outgoing MPs Omraj Nambalkar and Nagesh Ashtekar, they confirmed their exit, saying that there was absolutely no point in staying with the Uddhav Sena anymore. Chief Minister Fadnavis, meanwhile, he broke his silence finally with a subtle quip, saying that the operation was complete and the patient, in his words, was indeed healthy. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, he meanwhile reaffirms the success, saying that the NDA never undertook incomplete missions. We get you some reactions.
2: ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ये कैसा है कि हमारे यहाँ पे नांदेड़ वर्धा का काम चल रहा है रेलवे का
3: हाँ
2: अब वो काम को गति देने की है दो साल से हम उसके पीछे लगे हैं बहुत सालों से वो प्रोजेक्ट चालू है 15 साल से प्रोजेक्ट चालू है
3: जी
2: उसके बाद में किसानों की आत्महत्या बड़े पैमाने पे है
3: हाँ
2: उसके बाद में विकास निधि लोगों का क्या है कि 2200 गांव है कहीं कहीं लोकसभा में अब 2200 गांव के लोग आते हैं वो बोलते हैं हमको फंड दो हमारे गांव में ये करो हमारे गांव में वो कुछ ही नहीं कर सकते हम
3: क्यों नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास फंड नहीं ऐसा आपका कहना है
2: फंड ही नहीं आता ना फंड देते ही नहीं ना विरोधी पक्ष के लोग
3: और आप लोगों को ये लोग बार बार कह रहे हैं कि आप लोग गद्दार हैं आप लोगों ने धोखा दिया है और आप लोग जो चुनाव जीते हैं आप उन्हीं के चेहरे पे जीते हैं उद्धव ठाकरे के चेहरे पर और शिवसेना यूबीटी के सिंबल पर जीते हैं
2: नहीं उद्धव जी के बारे में हमारा कुछ भी बोलना नहीं है अब वो कैसा है कि लोगों की डिमांड थी लोग बोलते हैं कि आप विकास करो नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम कैसा क्या वोटिंग करेंगे लोगों को ऐसा समझाएंगे
3: लेकिन नाराजगी किसी संजय दादा नाराजगी किस बात को लेकर थी
2: नहीं नहीं नाराजगी नहीं किसी के बात
3: तो आप पे कोई दबाव बनाया गया ऐसा आरोप शिवसेना यूबीटी के लोग लगा रहे हैं कि आप पे एजेंसीज का दबाव बनाया गया प्रेशर बनाया गया
2: नहीं नहीं हमारे क्या हमारी प्रॉपर्टी उतनी नहीं है क्या एजेंसी के दबाव बने
4: आज सगळ्यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आम्ही निर्णय घेतलाय कि शिवसेना पक्षात त्या ठिकाणी आम्ही जाणार आहेत श्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही त्या ठिकाणी काम करणार आहेत
5: करणार आहे की माझ्या सोबत राहा मला जशी पहिली साथ दिली तशी आताही साथ द्या आणि मी तुम्हाला कुठेही नाराज करणार नाही मी सगळ्या गोष्टीचा विचार करून गेलो मी कार्यकर्त्याचा विचार करून गेलो मी पदाधिकाऱ्याचा विचार करून गेलो मी सगळ्यांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न करीन मी सगळ्याला सोबत घेऊन चालण्याचा प्रयत्न करेन मी कार्यकर्त्याला उभारी देण्याचा प्रयत्न नक्की करेन आपल्या आपण जे माझ्यावर विश्वास ठेवला होता आजही विश्वास ठेवा मी तुमच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही आणि मी काय दुसरं कुठं गेलेलो नाही आहे शिवसेनेतून शिवसेनेतच गेलेलो आहे विचारधारेला कधीही बाजूला टाकलेलं नाही आहे विचारधारा सोडून मी कधी वागलेलो नाही आहे आणि पुढेही कधी वागणार नाही आहे मी शिवसेनेतच आहे शिवसेनेतच राहणार आहे त्यात काही दुमत नाही विचारधारा मी नाही सोडलेली आहे बांधवांनो तशी त्याची काही काळजी करू नका पण काही मंडळी मी बघतोय की रागाच्या भरामध्ये काहीतरी असंवैधानिक बोलतायत माझी विनंती आहे आपल्याला हात जोडून विनंती आहे आपल्याला असंवैधानिक नका बोलू संवैधानिक बोला तुमचा राग करायचा व्यक्त व्हा नक्की व्यक्त व्हा मी जर कुठं चुकलो असेल तर माझ्यावर राग करणं तुमचा हक्क आहे मला नक्की करा पण असंवैधानिक नाही असंवैधानिक बोलू नका विनंती आहे आपल्याला
6: छह बागी नहीं बिकाऊ सांसद है वो चुन के आए थे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इनके चेहरे पे जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में अपने दल में शामिल करना चाहती है दलदल में शामिल करना चाहती है वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके उनको दो तिहाई जो मेजोरिटी है वो ही प्राप्त करना चाहती है और ताकि देश में संविधान बदल सके यही उनका लक्ष्य है
7: आज दोपहर को 3 बजे हम सभी जो हमारे 6 के 6 सांसद है जिन्होंने यहाँ पे शिवसेना शिंदेगढ़ में यानी हम शिंदेगढ़ ऐसा नहीं बने बोलेंगे यही हमारी शिवसेना है शिवसेना में शामिल होने का निर्णय ले लिया है पहले हमारे 7 और ये 6 मिला के 13 हमारे सांसद हो गए हमारे मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर विश्वास रखते हुए वो हमारे पार्टी में सभी लोग ऑफिशियल आज शामिल हो जाएंगे
8: मुझे देखिए कोई भी बागी नहीं है शिवसेना में प्रवेश करे शिवसैनिक है और दूसरी बात है कि मुझे उसके बारे में अधिकृत जानकारी नहीं है कि आज वो प्रवेश करने वाले हैं या क्या मगर निश्चित है कि माननीय एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने भी, हमारे जो मुख्य नेता है डीसीएम है, उन्होंने इस बात का स्वागत किया है। कल ओमराजे निंबाळकर जो है उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट की थी। बाकी जो खासदार है वो भी अपने मतदार क्षेत्र में गए थे, लोगों से, कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से उन्होंने बातचीत की है और निश्चित आज हमें कुछ अच्छी खबर मिलेगी।
9: आणि आता हे दोषी कुठेही नाही पडालं। सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये मी आमदार खासदार बघतोय, काही जण अजूनही आपल्या पक्षाची प्रामाणिक आहेत, काही नाही, काही जण सांगता ही दोषी तुटायची नाही, काही जण सांगता थांबायचं नाही।
10: पैसा बीजेपी के पास है, 85 करोड़ अगर आप एक एक सांसद को वहां पे दोगे तो कुछ ऐसे सांसद वो नहीं जाते, कुछ ऐसे सांसद वो बिक जाते, तो यहाँ पे 6 लोग बिक गए, पैसा ले लिया, और उसी के साथ उनके बहुत अलग अलग केसेस भी है, वहां पे भी दबाया जाता है, सब जगह से दबाने के बाद ये लोग झुक जाते हैं। अभी उन्होंने अगर डिसाइड किया होगा हम झुकने वालों से है तो वो झुकेंगे, हम तो झुकने वालों में से नहीं है, इसलिए हम लड़ रहे हैं।
11: तोड़ो फोड़ो की राजनीति कर पहले ही लोगों के वोट चोर कर और बेईमानी से चुन के आई मोदी की सरकार, लोगों ने जो वोट दिया है, जो विश्वास के साथ जिस दल को दिया है उसी को भी चुराना चाहते हैं, डाका डालना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी है, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है। 2029 में इनको पनिशमेंट मिलेगा और इनको सत्ता के बाहर जाना ही पड़ेगा, इस देश की जनता इनको सत्ता के बाहर करेंगे।
12: जहाँ कमल नहीं खिल पाता हाँ पहले कीचड़ बिछाया जाता है, ऑपरेशन कीचड़। तो आप हैरान क्यों हैं? हमें ये इस बात की हैरानी है कि मोदी जी के अहम को इतनी चोट पहुंची कि वो 400-400 करते हुए 240 पे लड़खड़ा गए, उस अहम को इतनी चोट पहुंची कि अब वो दाएं बाएं से चोरी डकैती करके अपने एमपी खरीदे जा रहे हैं। क्यों खरीद रहे हो साहब, क्या जरूरत है? सरकार चल रही ना आपकी, या भरोसा नहीं है नायडू जी पर, या जनता दल पर भरोसा नहीं है, किस पे भरोसा नहीं है? ये तो सीधे सीधे आप कह रहे हो कि साहब नायडू पर भरोसा नहीं है, नीतीश जी की पार्टी पर भरोसा नहीं है, तो चलिए मैं अपने घर में और चोरी करके एमपी भर लूं। जरूरत क्या है? आपके पास पैसा बहुत है, हम मानते हैं।
0: Well, yesterday Chief Minister Fadnavis said that Operation Tiger, well, it's complete, and Deputy Chief Minister Eknath Shinde, he reaffirmed the success in fact of Operation Tiger. But Uddhav Thackeray, well, he hits back at the Mahayuti. Listen in.
13: लवकरच तुम्हाला ब्रेकिंग न्यूज मिळेल। आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, फुलफुट करतो।
14: ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ आहे। ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ आहे।
15: शिवसेना प्रमुख एकच होऊन गेले, पुन्हा दुसरा शिवसेना प्रमुख होणे नाही, अजिबात होणार नाही। तुझा कोणत्या कुठला तरी पडलेला माणूस उचलून आणून तू खोलतीकडे बसल्याचा, जसा तू बसला होतास अध्यक्षपदी, तसं आज कोणतरी ध्यान बसवलंय। भाजपाला कोणी अध्यक्ष चालतो, पण शिवसेना प्रमुख हे एकमेव, दुसरा शिवसेना प्रमुख होणे नाही, लोक स्वीकारणार नाही। शिवसेनेचा प्रमुख कोण हा उपरा ठरू शकत नाही, तू उपरायस, तू उपरचुंबायस। त्याच वेळी तू तुझ्या अवकाशात राहा, त्याने त्यांचं घर सांभाळव, जर त्यांना पंतप्रधान पदाची स्वप्न बघत पडत असतील आणि म्हणून ते दुसऱ्याचे खासदार फोडून स्वतःचा खुंटा बळकट करत असतील, तर तुमच्या खुंट्याला पहिले मुळेचा बघा।
0: But shifting our focus, viewers, we got breaking news coming in. There's a row that has been now been triggered over Congress leader Shashi Tharoor's Kashmir remarks, and this row has now been triggered within the Congress party. So it's Congress versus Congress, essentially, on Shashi Tharoor's Kashmir remarks. Senior Congress MP Shashi Tharoor is in fact facing backlash from the party after calling the situation in Jammu and Kashmir as progressing towards encouraging normalcy. That's what the Congress leader said, that the situation in Jammu and Kashmir is currently progressing towards encouraging normalcy. And leaders in his own party are in fact slamming Shashi Tharoor for making this remark. Let's just listen in to the reactions coming in from the Congress party.
16: Taking only a minute.
17: Minute.
16: We have work, please. Work to do, right?
17: Sir, one small comment of yours about normalcy in Kashmir has led Congress to criticize.
18: Please.
17: sir, here actually, let me speak.
18: This time, Dr. Tharoor, after hailing India's position on the sailors' issue on Operation Sindoor, saying that no, India did not surrender, he has contradicted Congress's Rahul Gandhi's propaganda narrative on Kashmir and has said that Kashmir is moving and progressing towards normalcy. He has hailed what has happened in Kashmir. But Congress, as usual, has issued a fatwa against him. This is the intolerance towards anybody who puts not family first, but nation first. If Dr. Tharoor stands for the Operation Sindoor, if he hails India's diplomatic prowess and exposes what Congress is lying about on the sailors issue, or if he hails what has happened in Kashmir after removal of Article 370, Congress becomes red-faced and angry.
0: Well, my colleague Pradeep Datta joins us to put this entire row into perspective. Pradeep, why is exactly there a row on these remarks coming in from the Congress leader Shashi Tharoor?
19: See, Shashi Tharoor's remarks regarding the encouraging normalcy in Kashmir has not gone down well with the Congress party, and once again he has faced a backlash from within the party. And he had yesterday gone to meet Lieutenant Governor Manoj Sinha at Lok Bhavan in Srinagar. While he came out, he had put it on the social media post X, where he said that they discussed about various things, and he mentioned about that encouraging normalcy in Jammu and Kashmir. He said that a lot many things need to be done, but he has come out with a positive bent of mind. That is what actually he must have seen the change. Because he is contradicting somewhere what actually the Congress is claiming for the last several months. They are saying that the situation has deteriorated. And when the Shashi Tharoor, their senior party leader, colleague, who is here as a part of the parliamentary delegation, there to here to review the situation and also to discuss about the performance of the passport service here in the region. So when he is coming out with such a kind of a remark, obviously he is contradicting his party leadership. So that has not gone down well with them, because situation on the ground is totally different. That's one of the reasons that immediately after that, there was a swift response from the party chief spokesperson Ramendra Sharma. He said that Shashi Tharoor has gone to Lok Bhavan. He should have met the people on the ground. Only then he would have got to know about the situation on ground, how good it is, how bad it is. And the second thing he said, that instead of he should have spared some time to meet the party leadership who had been fighting for statehood for the last 7 years. So they are saying there is no statehood. Their state has been downgraded. It has become a union territory, and the situation is not that good and normal. But if you look at the data also, what actually Shashi Tharoor is mentioning about, see, after abrogation of Article 370, stone pelting has come to state halt during the last 1.5 years. Notice
0: right, so Shashi Tharoor essentially going against the party lines there. But very quickly, let's just listen into the reactions coming in. You got latest reactions by Arun Govil and Mukhtar Naqvi, which have just come in. Take a look.
17: How you see normalcy here in Jammu and Kashmir when you had been here now? कैसा लग रहा है आपको सिचुएशन?
20: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सभी कुछ बहुत अच्छा हो रहा है. दिनों दिन इतना काम हो रहा है यहाँ पर. हम पहले भी आए हैं, पहले बहुत पहले आते थे जब शूटिंग्स होती थी यहाँ पर, उसके बाद फिर भी आए. अभी बहुत अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज गुड.
17: अच्छा सर, एक चीज़ पूछना था. हाँ. शशि थरूर जी ने कल गए थे, वो लोक भवन गए थे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर नॉर्मलसी है, तो कांग्रेस वाले ही उन पर पड़ गए कि आप आम आदमी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप तो लोक भवन में जाके कह रहे हैं नॉर्मलसी है. तो हाउ यू रिएक्ट टू दिस थिंग?
20: कांग्रेस तो हर अच्छी चीज़ में पड़ जाती है, बस उसकी आदत हो गई है.
21: कांग्रेस की एक दिक्कत है, उसकी जमीन तो बंजर हो गई है, लेकिन अभी भी उसके हाथ में बेवफाई का खंजर है. अब उनका जो है वो अपनों पे सितम, गैरों पे करम, जाने वफा ये जुल्म न कर. अरे भाई, थरूर भी आपके हैं और उनका सुरूर भी आपका है, क्यों उस पर जो है वो कंफ्यूजन का जो है वो कोड़ा चला रहे हैं?
0: Well, with that, it's time we slip into a short break. Viewers, news and updates continue on the other side.

0: बाद में विकास निधि लोगों का क्या है कि 2200 गांव है कहीं लोकसभा में। अब 2200 गांव के लोग आते हैं, वो बोलते हैं हमको फंड दो, हमारे गांव में ये करो, हमारे गांव में वो करो, कुछ ही नहीं कर सकते हम
1: क्यों नहीं
0: हीरोइन
1: कर सकते? क्योंकि आपके पास फंड नहीं है, ऐसा
0: क्या
1: आपका कहना है?
0: फंड ही नहीं आता ना, फंड देते ही नहीं ना विरोधी पक्ष के लोगों को।
1: और आप लोगों को ये लोग बार बार कह रहे हैं कि आप लोग गद्दार हैं, आप लोगों ने धोखा दिया है, और आप लोग जो चुनाव जीते हैं आप उन्हीं के चेहरे पे जीते हैं, उद्धव ठाकरे के चेहरे पर और शिवसेना यूबीटी के सिंबल पर जीते हैं।
0: नहीं, उद्धव जी के बारे में हमारा कुछ भी बोलना नहीं है। अब वो कैसा है कि लोगों की डिमांड थी, लोग बोलते हैं कि आप विकास करो नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम कैसा क्या वोटिंग करेंगे, लोगों को ऐसा समझाएंगे। तो
1: लेकिन
0: लोग
1: नाराजगी किसी,
0: विकास के लिए
1: संजय दादा, नाराजगी किस
0: नाराजगी
1: बात को
0: किसे,
1: लेकर थी?
0: नहीं, नाराजगी नहीं किसी की वोटिंग,
1: तो आप पे कोई दबाव बनाया गया, ऐसा आरोप शिवसेना यूबीटी के लोग लगा रहे हैं कि आप
0: नहीं,
1: पे
0: ऐसा कोई दबाव
1: एजेंसीज का दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया?
0: नहीं। हमारे क्या, हमारी प्रॉपर्टी उतनी नहीं है क्या एजेंसी के दबाव में।
2: आज सगळ्यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आम्ही निर्णय घेतलाय की शिवसेना पक्षात त्या ठिकाणी आम्ही जाणार आहेत। श्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही त्या ठिकाणी काम करणार आहेत।
3: करणार की माझ्या सोबत राहा, मला जशी पहिली साथ दिली तशी आताही साथ द्या, आणि मी तुम्हाला कुठेही नाराज करणार नाही। मी सगळ्या गोष्टीचा विचार करून गेलो, मी कार्यकर्त्याचा विचार करून गेलो, मी पदाधिकाऱ्याचा विचार करून गेलो, मी सगळ्यांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न करीन, मी सगळ्याला सोबत घेऊन चालण्याचा प्रयत्न करीन, मी कार्यकर्त्याला उभारी देण्याचा प्रयत्न नक्की करेन। आपल्या आपण जे माझ्यावर विश्वास ठेवला होता आजही विश्वास ठेवा, मी तुमच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही। आणि मी काय दुसरं कुठं गेलेलो नाही आहे, शिवसेनेतून शिवसेनेतच गेलेला आहे, विचारधारेला कधीही बाजूला टाकलेलं नाही आहे, विचारधारा सोडून मी कधी वागलेलो नाहीये आणि पुढेही कधी वागणार नाहीये। मी शिवसेनेतच आहे, शिवसेनेतच राहणार आहे, त्यात काही दुमत नाही। विचारधारा मी नाही सोडलेली आहे बांधवांनो, तसेच त्याची काही काळजी करू नका। पण काही मंडळी मी बघतोय की रागाच्या भारामध्ये काहीतरी असंविधानिक बोलतायत, माझी विनंती आहे आपल्याला, हात जोडून विनंती आहे आपल्याला, असंविधानिक नका बोलू, संविधानिक बोला, तुमचा राग करायचा व्यक्त व्हा, नक्की व्यक्त व्हा। मी जर कुठं चुकलो असेल तर माझ्यावर राग करणं तुमचा हक्क आहे, मला नक्की करा, पण असंविधानिक नाही, असंविधानिक बोलू नका, विनंती आहे आपल्याला।
4: छह बागी नहीं बिकाऊ सांसद है वो चुन के आए थे उद्धव ठाकरे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इनके चेहरे पे जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे, वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके। उनको दो तिहाई जो मेजोरिटी है वो ही प्राप्त करना चाहती है और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य है।
5: आज दोपहर को 3 बजे हम सभी जो हमारे 6 के 6 सांसद है जिन्होंने यहाँ पे शिवसेना शिंदेगढ़ में, यानी हम शिंदेगढ़ ऐसा नहीं बने बोलेंगे, यही हमारी शिवसेना है, शिवसेना में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। और पहले हमारे 7 और ये 6 मिला के 13 हमारे सांसद हो गए। हमारे मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर विश्वास रखते हुए वो हमारे पार्टी में सभी लोग ऑफिशियल आज शामिल हो जाएंगे।
6: मुझे देखिए कोई भी बागी नहीं है शिवसेना में प्रवेश करे, शिवसैनिक है। और दूसरी बात है कि मुझे उसके बारे में अधिकृत जानकारी नहीं है कि आज वो प्रवेश करने वाले हैं या क्या, मगर निश्चित है कि माननीय एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने भी हमारे जो मुख्य नेता है डीसीएम है, उन्होंने इस बात का स्वागत किया है। कल ओमराजे निंबाळकर जो है उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट की थी, बाकी जो खासदार है वो भी अपने मतदार क्षेत्र में गए थे, लोगों से, कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से उन्होंने बातचीत की है और निश्चित आज हमें कुछ अच्छी खबर मिलेगी।
7: आणि आता हे दोषी तुटायचे नाही पडालं, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये मी आमदार खासदार बघतोय, काही जण अजूनही आपले पक्षाचे प्रामाणिक आहेत, काही नाही, काही जण सांगतात की दोषी तुटायची नाही, काही जण सांगतात थांबायचं नाही।
8: पैसा बीजेपी के पास है 85 करोड़, अगर आप एक एक सांसद को वहां पे दोगे तो कुछ ऐसे सांसद वो नहीं जाते, कुछ ऐसे सांसद वो बिक जाते, तो यहाँ पे 6 लोग बिक गए, पैसा ले लिया, और उसी के साथ उनके बहुत अलग अलग केसेस भी है, वहां पे भी दबाया जाता है। सब जगह से दबाने के बाद ये लोग झुक जाते हैं। अभी उन्होंने अगर डिसाइड किया होगा हम झुकने वालों से है तो वो झुकेंगे, हम तो झुकने वालों में से नहीं है, इसलिए हम लड़ रहे हैं।
9: तोड़ो फोड़ो की राजनीति कर पहले ही लोगों के वोट चोर कर और बेईमानी से चुनके आई मोदी की सरकार, लोगों ने जो वोट दिया है, जो विश्वास के साथ जिस दल को दिया है, उसी को भी चुराना चाहते हैं, डाका डालना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी है। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है। 2029 में इनको पनिशमेंट मिलेगा और इनको सत्ता के बाहर जाना ही पड़ेगा। इस देश की जनता इनको सत्ता के बाहर करेंगे।
10: जहां कमल नहीं खिल पाता वहां पहले कीचड़ बिछाया जाता है, ऑपरेशन कीचड़। तो आप हैरान क्यों हैं? हमें ये इस बात की हैरानी है कि मोदी जी के अहम को इतनी चोट पहुंची कि वो 400-400 करते हुए 240 पे लड़खड़ा गए। उस अहम को इतनी चोट पहुंची कि अब वो दाएं बाएं से चोरी डकैती करके अपने एमपी खरीदे जा रहे हैं। क्यों खरीद रहे हो साहब? क्या जरूरत है? सरकार चल रही ना आपकी? या भरोसा नहीं है नायडू जी पर, या जनता दल पर भरोसा नहीं है? किस पे भरोसा नहीं है? ये तो सीधे सीधे आप कह रहे हो कि साहब नायडू पर भरोसा नहीं है, नीतीश जी की पार्टी पर भरोसा नहीं है, तो चलिए मैं अपने घर में और चोरी करके एमपी भर लूं। जरूरत क्या है? आपके पास पैसा बहुत है, हम मानते हैं।
11: Already opposition hitting out over the switching of the MPs. Yesterday, Chief Minister Fadnavis, however, said that Operation Tiger, as this entire episode is being referred to, is complete. And Eknath Shinde reaffirmed the success of the operation, while Uddhav Thackeray hit back at the Mahayuti. Listen in.
12: लवकरच तुम्हाला ब्रेकिंग न्यूज मिळेल। आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, फुलफुट करतो।
13: ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ आहे। ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ आहे।
14: शिवसेना प्रमुख एकच होऊन गेले, पुन्हा दुसरा शिवसेना प्रमुख होणे नाही, अजिबात होणार नाही। तुझा कोणतरी कुठला तरी पडलेला माणूस उचलून आणून तू तिकडे बसल्याचा, जसा तू बसला होता अध्यक्षपदी, तसा आज कोणतरी ध्यान बसवलंय। भाजपाला कोणी अध्यक्ष चालतो, पण शिवसेना प्रमुख एकमेव, दुसरा शिवसेना प्रमुख होणे नाही, लोक स्वीकारणार नाही। शिवसेनेचा प्रमुख कोण हा उभरा ठरू शकत नाही, तू उभरा आहेस, उभरायस, तू उपटचुंब आहेस। त्याच्या वेळी तू तुझ्या अवकाशात राहा, त्यांनी त्यांचं घर सांभाळावं। जर त्यांना पंतप्रधान पदाची स्वप्न बघत पडत असतील आणि म्हणून ते दुसऱ्याचे खासदार बोलून स्वतःचा खुंटा भडकात करत असतील, तर तुमच्या खुंट्याला पहिले मुळायचा बघा।
11: All right, some breaking news now coming in from Karnataka on the NEET re-exam that took place, and the Karnataka government will be forming a panel to probe the NEET exam row. This is after several students missed their exam because they arrived late at the exam center. Remember, it's become a huge controversy. Visuals of the students crying also went viral. Karnataka Congress chief has said the students' issue will be reviewed, and he says ready to assist students. So hopefully some relief for those students who missed their exams. They were late and they blame the traffic, the BJP. Remember, it's also become political, with the BJP accusing the Congress event for delaying the students and causing the traffic jam.
15: The exit master of Bangalore, he makes vague allegations on Congress party. According to the reports, only 3 students have faced this problem. I just want, if there is any kind of hardship which our children have faced, my deepest regrets are there. But at the same time, I would like to question the Bharatiya Janata Party, what they have done to these children. Thrice the NEET question papers have been leaked.
11: All right, the Congress, they're saying that they will look into the issues involving these 3 students who arrived late for the NEET re-exam. You can see the visuals of them there. They were not allowed to take the exam, and you could see them crying and absolutely stricken and in anguish. And this has caused a huge uproar. And now the BJP there in Karnataka has said it is because of a Congress event that was being held yesterday. It caused further traffic jams already. Remember, Bangalore traffic is notorious for these long traffic jams, and the BJP accusing the Congress of further worsening the situation. The Congress denying this, however, saying that they will form a committee that will look into all these issues and that they are ready to assist the students, but also hitting out at the BJP and at the central government over the fact that NEET students had to take a re-exam in the first place, saying this is because of the paper leak issue. So politics there taking place over this issue when three students who were appearing for the NEET UG exam actually missed the exam because they arrived late. They were not allowed to go in by the invigilators, as you can see there. This has also raised questions over, you know, why students should be prevented in this manner from taking such a crucial exam, an exam that causes so much trauma and stress for so many students across the country. The Congress in Karnataka now saying the students' issue will be reviewed and that these students will be helped. This is after politics broke out over these three students missing the exam, with the BJP accusing the Congress that because of an event of the Congress, remember Congress chief Mallikarjun Kharge was in Bengaluru, and the BJP saying it is because of the preparations for that event that these students got delayed. Well, shifting focus now to Bihar, but staying with the NEET re-exam. During the NEET exam yesterday, police and district authorities launched a major crackdown amid suspicions of a solver gang being active in the district, which led to the arrest of 9 impersonators. These were impersonators who were going in and taking the exam on behalf of the students. Now, according to sources, the NTA is working with the Bihar police, and CCTV footage is also being scanned. Digital footprints are being monitored. The NTA DG has issued a warning to these scamsters, saying that we have conveyed a message to all scamsters that they cannot beat the system and strict action will be taken against them. Of the 9 arrested impersonators, 1 was caught from the KRK School Examination Centre, 7 from a Kendra Vidyalay, and 1 from Hasanpur School Centre. A special police team is carrying out raids at multiple locations to uncover possible links to a wider solver gang network.
16: Some cases have been reported from Bihar. We have got some cases of Lakhisarai. In some cases, some students were trying to smuggle in mobile phones. In some cases, somebody was trying to impersonate. So we do all level of frisking and checking and CCTV surveillance and biometric authentication to check these malpractices. The purpose of all the security layers that we have is to ensure that nobody is able to do any malpractice. It's obvious that if there are few persons who are trying to do that, they will be caught. I said very clearly that anybody who tries to spread misinformation, share fake videos, share fake posts in order to scam someone or in order to increase the mental stress of people, the strong arm of the law will come very strongly on it. So all such cases are in our radar, and we have reported to them, and those who are perpetrating them will be dealt with very strongly by the police and the law enforcement agencies. We keep an eye on everything, but this time we are 100% sure about the security and integrity of the process, right from setting up question papers to the translations to the printing. We have complete chain of custody.
11: All right, so let's take you through the modus operandi of this network that solves papers for students. It's an organized network which arranges the impersonators that will go in and take the exam for the students. Medical students are the ones who are usually hired to write the exams for candidates. And then you have fake candidates essentially appearing in place of the genuine aspirants. They have their IDs, they have their admit cards. The deal is allegedly struck for a very hefty payment, and half the amount is paid before the examination. The remaining payment is then linked to the successful result, which is why the police are now searching for the wider network. And this network allegedly used multiple facilitators. For the moment, 9 such people have been caught who were there in place of the actual students taking the exams, but it could be a much larger network. Remember, this was also in a movie, Munna Bhai MBBS, but this is the real life network which has these people, the modus operandi for taking the exam for medical students. Well, moving on to other news now, and a major political storm has erupted in Karnataka after the Legislative Council elections, with visible cracks emerging within the BJP following allegations of cross-voting in the MLC polls. Remember, this has been a loss of face and setback for the BJP. The BJP suspects that at least 12 of its MLAs may have voted against the party line, and this has prompted an internal probe. And, you know, it's also being said that the high command in Delhi is very, very unhappy over this. Karnataka BJP chief B.Y. Vijayendra announced a special legislature party meeting at Dharamsthala, where the BJP legislators will be asked to take an oath before Lord Manjunath and disclose how they voted. Senior BJP leaders have described the cross-voting as anti-party act, alleging that some legislators may have been swayed by money and calling for a thorough probe into the matter. While the Congress seized on the results, claiming the episode reflects a growing loss of confidence in the BJP leadership, Congress won 5 of the 7 seats amid allegations of large-scale cross-voting by BJP legislators.
17: Clear the minds of our party workers, cadres. I have decided that we should call legislative party meeting at Dharamsthala immediately, maybe next 4-5 days. So in front of Lord Manjunatheshwara, our MLAs has to take oath and speak out on conscious vote what they have done in the MLC election, because it's very important. I'm sure there might be some criticism on my decision also regarding the legislative party meeting in Dharamsthala.
18: It's really unfortunate that there was a cross-voting from BJP during the Vidhan Parishad election. It was not expected. However, there was a lot of pressure from Congress government, and there was a huge money offer, and some gullible MLAs have fallen for it. So we have appointed a committee to look into the matter. As soon as committee report comes, our party high command will take a suitable decision of action against those all MLAs.
19: It's a point of discussion, and already our state president and other leaders already expressed that who are there, who cross-voted, and indisciplined activities. And against the anti-party works, anti-party activities, and against the whip, whatever the, it is, if it is violated, definitely the state president and the high command has the right to take the action.
20: 3-member committee bana hai. Hum log inquiry kar raha hai. Primary information humko mila hai. NDA mein 12 log cross voting kiya hai. Ek vote उन्हें इनवैलिड किया है और 12-11 वोट क्रॉस वोटिंग किया है, ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन मिला है. कुछ एमएलए के विधायकों के ऊपर संदेह है, उसमें सच कितना है हम वेरीफाई कर रहा है.
21: विजेंद्र येडियुरप्पा, द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट बीजेपी, हैज सेड दैट ही वांट्स all his MLAs to come before Lord Manjunatha Swami of Dharamsthala and take a oath saying that they have not cross-voted. It's a shame, Mr. Vijayendra Yediyurappa, that to cover up your inefficiency, to cover up your deficiency in maintaining the group as a whole, you are invoking the name of Lord Manjunatha.
11: News now from Kolkata, and a political controversy has erupted in Kolkata after the Kolkata Municipal Corporation renamed the Suravardi Avenue as Gopal Mukherjee Road. The state government hailed the move as a historic correction, Chief Minister Suvendu Adhikari saying that the name change rectifies a long-standing historical wrong and honours Gopal Mukherjee for protecting Hindus during the Calcutta riots. However, the opposition accused the government of distorting history. The Trinamool Congress argued that the avenue was actually named after noted physician and former Calcutta University Vice Chancellor Hassan Suravardi and not Hussein Shaheed Suravardi, the controversial former premier of undivided Bengal. Meanwhile, the Congress also accused the West Bengal government of confusing the two different Suravardis.
22: देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए कलकत्ता कॉरपोरेशन को धन्यवाद दिया है, तो हम भी धन्यवाद देंगे कलकत्ता कॉरपोरेशन को, क्योंकि गेट कैटकाटा के लिए इसके समय गोपाल मुखर्जी ने हिंदुओं को बचाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी।
0: अब हम नंदकिशोर गर्ग को अरसे से जानते हैं, यहाँ हमारे दिल्ली में एमएलए रहे हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, नेशनल बॉडी में भी। उनकी पुस्तक कहती है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी

0: सर हसन सुहरावर्दी के बहुत घनिष्ठ संबंध थे आपस में, वो सुहरावर्दी जी को बड़ा सपोर्ट करते थे। जब वाइस चांसलर बने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सुहरावर्दी साहब, प्रथम मुस्लिम वाइस चांसलर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जब वो बने, उनका विरोध हुआ। उस वक्त जो समर्थन में उतरे थे उनके, वो दो लोग थे, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जाके सड़क का नाम बदल दिया, कंफ्यूज हो गए कौन से सुहरावर्दी, ये तो सरकार चला रहे हैं ऐसे जाहिल लोग।
1: उनका काम है सवाल उठाना, उठाने दो। सुहरावर्दी हमारा कौन लगता है? सुहरावर्दी हमारा अब्दुल सर अब्दुल कलाम आजाद के अब्दुल कलाम साहब के नाम में रखिए, अबुल कलाम आजाद के नाम में रखिए, वो अलग बात है। लेकिन ये सुहरावर्दी हमारा कौन लगता है, उसके साथ हमारा कौन सा रिश्ता है? और गोपाल मुखर्जी ने हमारा शहर को बचाया है, सही नाम चुना है, सही नाम को निकाला गया है।
0: सारे बदलेगा, जैसा कि ब्रिटिशों के नाम पर जो नाम था वो बदल दिया गया है, और बाकी जो है जो देश का विरोध किया है ऐसे और सांप्रदायिक तत्व जो डिवीजन किया है उनका नाम तो नहीं रहना चाहिए।
2: देखिए, जब कोई नाम होता है ना, उसका पीछे कोई हिस्ट्री, कोई इंसिडेंट ये होता है। एक बार नाम पूरा चेंज कर देना, जिसका नाम पे रास्ता नई तरह से रखना है वो तो हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी का नाम जब हटाने का बात आता है तो पूरा इरेज करने से ये हिस्ट्री का ऊपर इम्पैक्ट हो जाता है। पास्ट को तो जानना चाहिए, जब नाम रखा गया था कोई ना कोई तो उसका कारण था।
3: सुहरावर्दी तो पश्चिम बंगाल में दंगा कराया, सुहरावर्दी पश्चिम बंगाल का हालत खराब किया, इसीलिए ऐसा सुहरावर्दी नहीं चलेगा। जो द ग्रेट कलकत्ता किलिंग से जनता को बचाया वही गोपाल मुखर्जी, जिसका नाम इतना दिन छुपा के रखा था कांग्रेस कम्युनिस्ट ने। गोपाल मुखर्जी नहीं होता 10,000 जो हिंदू मारे गए, वो कम से कम 40,000 हिंदू का मौत होता। गोपाल मुखर्जी उसका सारे क्लाब का वाहिनी लेके उन लोगों ने जो दंगा से रक्षा कराया हमारा माता बहन को, जनता को, इसीलिए हिंदू बचा।
4: Well, let's go across to Shreshi now for more on this entire story. And Shreshi, the BJP hailing this move as a correction, long needed correction, but the opposition pointing out that they're confusing the Sohrawardi, saying this is not after the person who's involved in riots, but actually the road was named after a noted physician and former Calcutta University vice chancellor.
5: Well, this is the first name change under the BJP-led West Bengal government here in Kolkata. And of course, this change also ushers in a reshaping of Kolkata's history as well. While people have been divided and has sparked a debate over who this Sohrawardi is, but there is a link that is there with the Calcutta killings, the nephew who had spearheaded that. But of course, the BJP has given its reasons for renaming it after Gopal Nath Mukherjee, calling him a Hindu savior during the 1946 direct action day here. But of course, critics are divided, while one half is saying that this is an attempt to ideologically rewrite history of the state. On the other hand, people have said that, you know, Gopal Patha, as he was famously known, had not got due credit for the work he did during the Calcutta killings and how he safeguarded the Hindus, and this is the right way of giving him his place of honor, while also changing a colonial era road. This road was named in 1933, but more popularly known as Park Circus. Gargi, however, amidst all of this debate and political slugfest that is opening out here in the state, on the other hand, the regular people who commute through these roads usually stick to the colloquial term and call it Park Circus. Seldom we see official names being used in a day-to-day life. Only when it comes to official work is when the official roads are really, remembered. But otherwise, it's popularly known as the Park Circus area of the city.
4: All right, Shreshi, making an important point there, what it means for the common man. Thanks so much for joining us with all those developments. With that, we'll sip into a short break. More news coming up on the other side. Do stay with us.

0: ये पूरा भरोसा है डॉक्टर थरूर सबसे मिलेंगे और उसके बाद वो अपना मंतव्य भी बदलेंगे, मैं पूरा भरोसा, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी, मुझे भरोसा है वो करेंगे ऐसा।
1: उनके ऊपर उम्र हावी हो गई, बिचारों के ऊपर उम्र का तकाजा हो रहा है, बस और कुछ नहीं है।
2: यू सी नॉर्मलसी हियर इन जम्मू कश्मीर व्हेन यू हैड बीन हियर नाउ, कैसा लग रहा है आपको सिचुएशन?
3: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सभी कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, दिनों दिन इतना काम हो रहा है यहाँ पर। हम पहले भी आए हैं, पहले बहुत पहले आते थे जब शूटिंग्स होती थी यहाँ पर, उसके बाद फिर भी आए, अभी बहुत अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज गुड।
2: अच्छा सर, एक चीज़ पूछना था, शशि थरूर जी ने कल गए थे, वो लोकभवन गए थे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे नॉर्मलसी है, तो कांग्रेस वाले ही उन पर पड़ गए कि आप आम आदमी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप तो लोकभवन में जाके कह रहे हैं नॉर्मलसी है, तो हाउ यू रिएक्ट टू दिस थिंग?
3: कांग्रेस तो हर अच्छी चीज़ में पड़ जाती है, बस उसकी आदत हो गई।
4: कांग्रेस की एक दिक्कत है, उसकी जमीन तो बंजर हो गई है लेकिन अभी भी उसके हाथ में बेवफाई का खंजर है। अब उनका जो है वो अपनों पे सितम, गैरों पे करम, जाने वफा ये जुल्म न कर। अरे भाई, थरूर भी आपके हैं और उनका सुरूर भी आपका है, क्यों उस पर जो है वो कंफ्यूजन का जो है वो कोड़ा चला रहे हैं?
5: दिस टाइम डॉक्टर थरूर आफ्टर हेलिंग इंडियाज पोजिशन ऑन द सेलर्स इश्यू ऑन ऑपरेशन सिंदूर, saying that no, India did not surrender, he has contradicted Congress's Rahul Gandhi's propaganda narrative on Kashmir and has said that Kashmir is moving and progressing towards normalcy. He has hailed what has happened in Kashmir, but Congress as usual has issued a fatwa against him. This is the intolerance towards anybody who puts not family first but nation first. If Dr. Tharoor stands for the Operation Sindoor, if he hails India's diplomatic prowess and exposes what Congress is lying about on the sailors issue, or if he hails what has happened in Kashmir after removal of Article 370, Congress becomes red-faced and angry.
6: बिल्कुल दुरुस्त, उन्होंने कहा कि राजभवन या जिसको हम आप लोकभवन कहते हैं उसके अंदर तो नॉर्मलसी है, क्योंकि वो वहाँ गए हैं, जब वो लोगों से मिलेंगे तो पता लगेगा कि किस तरह की नॉर्मलसी है इस वक्त। और मैं शशि थरूर साहब जो कि बड़े सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो यहाँ जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया है, उनको शायद किसी ने सुनाया नहीं होगा कि पुंछ रजौरी में पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशन शेरांवाली चल रहा है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है।
7: And earlier, Khera and Tharoor had clashed after Tharoor's remark on Prime Minister Modi. The row began after Tharoor praised Modi's firm messaging on maritime security and deaths of Indian sailors during interactions at the G7 outreach session. Khera responded sarcastically, suggesting that Tharoor was hearing statements that did not appear in the official record and accusing him of excessive admiration for the Prime Minister. Listen in.
8: No, I haven't seen Dr. Tharoor's statement. But I have also not seen where is the force. Now there is a joint statement. Now in that joint statement, MEA ka readout. There is a readout of Ministry of External Affairs on the G7 Modi-Trump meet. Is there a mention of India raising concerns over the deaths of three Indian sailors? No, I haven't seen it. Have you seen it? I'm sure Dr. Tharoor has also not seen it. Now, is there a mention of cross-border terrorism by Pakistan? I haven't heard it. I haven't seen it. I'm sure Dr. Tharoor has not seen it. Is there a mention refuting all the claims made by Donald Trump 120 times of a mediation between India and Pakistan by America? We haven't seen any such mention. I'm sure Dr. Tharoor has not seen it. Is there a mention of Iris Dena? I haven't seen it. So where is the force? What is the forceful claim made by, assertion made by Narendra Modi with Donald Trump?
9: Sir, has there been any question asked by you to him?
8: Because no, we are asking questions to Mr. Modi. I mean, that's more important.
7: Pawan sir. Let's shift our focus now. The Ayodhya Ram Temple donation controversy is deepening. Special investigation team probing the Ayodhya Sri Ram Temple matter met Chief Minister Yogi Adityanath and submitted its preliminary report on the 7th day of the probe. The SIT had spent 6 days conducting inquiries and gathering information in Ayodhya before presenting its initial findings to the Chief Minister. While trust officials and temple functionaries have reportedly been asked not to leave the city, investigators are examining allegations linked to donations, missing jewellery, land purchases, procurement processes and financial transactions as political sparring intensifies.

0: चालू है, मैं 15 साल से प्रोजेक्ट चालू है,
1: जी
0: उसके बाद में किसानों की आत्महत्या बड़े पैमाने पे है,
1: हाँ
0: उसके बाद में विकास निधि लोगों का क्या है कि 2200 गांव है कहीं लोकसभा में, अब 2200 गांव के लोग आते हैं, वो बोलते हमको फंड दो, हमारे गांव में ये करो, हमारे गांव में वो, कुछ ही नहीं कर सकते हम।
1: क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास फंड नहीं,
0: क्या
1: ऐसा आपका कहना है?
0: फंड ही नहीं आता ना, फंड देते ही नहीं ना विरोधी पक्ष के लोगों को।
1: और आप लोगों को ये लोग बार बार कह रहे हैं कि आप लोग गद्दार हैं, आप लोगों ने धोखा दिया है, और आप लोग जो चुनाव जीते हैं आप उन्हीं के चेहरे पे जीते हैं, उद्धव ठाकरे के चेहरे पर और शिवसेना यूबीटी के सिंबल पर जीते हैं।
0: मैं उद्धव जी के बारे में हमारा कुछ भी बोलना नहीं है। अब वो कैसा है कि लोगों की डिमांड थी, लोग बोलते हैं कि आप विकास करो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम कैसा क्या वोटिंग करेंगे, लोगों को ऐसा समझाएंगे।
1: लेकिन
0: लोग
1: नाराजगी किसी
0: विकास के लिए
1: संजय दादा नाराजगी किस
0: नाराजगी
1: बात
0: किसे
1: को लेकर थी?
0: नहीं नहीं नाराजगी नहीं किसी के वापस,
1: तो आप पे कोई दबाव बनाया गया ऐसा आरोप
0: नहीं नहीं नहीं
1: शिवसेना यूबीटी के लोग लगा रहे हैं कि आप पे
0: ऐसा कोई
1: एजेंसीज का दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया?
0: नहीं नहीं हमारे क्या, हमारी प्रॉपर्टी उतनी नहीं है, क्या एजेंसी के दबाव होते।
2: आज सगळ्यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आम्ही निर्णय घेतलाय की शिवसेना पक्षात त्या ठिकाणी आम्ही जाणार आहेत। श्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही त्या ठिकाणी काम करणार आहेत।
3: करणार की माझ्या सोबत राहा, मला जशी पहिली साथ दिली तशी आताही साथ द्या, आणि मी तुम्हाला कुठेही नाराज करणार नाही। मी सगळ्या गोष्टीचा विचार करून गेलो, मी कार्यकर्त्याचा विचार करून गेलो, मी पदाधिकाऱ्याचा विचार करून गेलो, मी सगळ्यांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न करीन, मी सगळ्याला सोबत घेऊन चालण्याचा प्रयत्न करीन, मी कार्यकर्त्याला उभारी देण्याचा प्रयत्न नक्की करेन। आपल्या आपण जे माझ्यावर विश्वास ठेवला होता आजही विश्वास ठेवा, मी तुमच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही। आणि मी काय दुसरं कुठं गेलेलो नाही आहे, शिवसेनेतून शिवसेनेतच गेलेला आहे, विचारधारेला कधीही बाजूला टाकलेलं नाही आहे, विचारधारा सोडून मी कधी वागलेलो नाहीये आणि पुढेही कधी वागणार नाहीये। मी शिवसेनेतच आहे, शिवसेनेतच राहणार आहे, त्यात काही दुमत नाही। विचारधारा मी नाही सोडलेली आहे बांधवांनो, तसेच त्याची काही काळजी करू नका। पण काही मंडळी मी बघतोय की रागाच्या भारामध्ये काहीतरी असंविधानिक बोलतायत, माझी विनंती आहे आपल्याला, हात जोडून विनंती आहे आपल्याला, असंविधानिक नका बोलू, संविधानिक बोला, तुमचा राग करायचा व्यक्त व्हा, नक्की व्यक्त व्हा। मी जर कुठं चुकलो असेल तर माझ्यावर राग करणं तुमचा हक्क आहे, मला नक्की करा, पण असंविधानिक नाही, असंविधानिक बोलू नका, विनंती आहे आपल्याला।
4: छह बागी नहीं बिकाऊ सांसद है, वो चुन के आए थे उद्धव ठाकरे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इनके चेहरे पे जो वो चुन के आए थे, वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे वो जो चुन के आए थे, वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके, उनको दो तिहाई जो मेजोरिटी है वो ही प्राप्त करना चाहती है और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य है।
5: आज दोपहर को 3 बजे हम सभी जो हमारे 6 के 6 सांसद है जिन्होंने यहाँ पे शिवसेना शिंदेगढ़ में, यानी हम शिंदेगढ़ ऐसा नहीं बनाए बोलेंगे, यही हमारी शिवसेना है, शिवसेना में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। और पहले हमारे 7 और ये 6 मिला के 13 हमारे सांसद हो गए, हमारे मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर विश्वास रखते हुए वो हमारे पार्टी में सभी लोग ऑफिशियल आज शामिल हो जाएंगे।
6: मुझे देखिए कोई भी बागी नहीं है, शिवसेना में प्रवेश करे शिवसैनिक है, और दूसरी बात है कि मुझे उसके बारे में अधिकृत जानकारी नहीं है कि आज वो प्रवेश करने वाले हैं या क्या, मगर निश्चित है कि माननीय एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने भी हमारे जो मुख्य नेता है DCM है, उन्होंने इस बात का स्वागत किया है। कल ओमराजे निंबाळकर जो है उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट की थी, बाकी जो खासदार है वो भी अपने मतदार क्षेत्र में गए थे, लोगों से, कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से उन्होंने बातचीत की है, और निश्चित आज हमें कुछ अच्छी खबर मिलेगी।
7: आणि आता हे दोषी तुटायचे नाही पडालं, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये मी आमदार खासदार बघतोय, काही जण अजूनही आपले पक्षाचे प्रामाणिक आहेत, काही नाही, काही जण सांगतात की दोषी तुटायची नाही, काही जण सांगतात थांबायचं नाही।
8: पैसा बीजेपी के पास है 85 करोड़, अगर आप एक एक सांसद को वहां पे दोगे तो कुछ ऐसे सांसद वो नहीं जाते, कुछ ऐसे सांसद वो बिक जाते, तो यहाँ पे 6 लोग बिक गए, पैसा ले लिया, और उसी के साथ उनके बहुत अलग अलग केसेस भी है, वहां पे भी दबाया जाता है, सब जगह से दबाने के बाद ये लोग झुक जाते हैं। अभी उन्होंने अगर डिसाइड किया होगा हम झुकने वालों से है तो वो झुकेंगे, हम तो झुकने वालों में से नहीं है, इसलिए हम लड़ रहे हैं।
9: तोड़ो फोड़ो की राजनीति कर पहले ही लोगों के वोट चोर कर और बेईमानी से चुन के आई मोदी की सरकार, लोगों ने जो वोट दिया है, जो विश्वास के साथ जिस दल को दिया है उसी को भी चुराना चाहते हैं, डाका डालना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी है, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है। 2029 में इनको पनिशमेंट मिलेगा और इनको सत्ता के बाहर जाना ही पड़ेगा, इस देश की जनता इनको सत्ता के बाहर करेंगे।
10: जहाँ कमल नहीं खिल पाता वहाँ पहले कीचड़ बिछाया जाता है, ऑपरेशन कीचड़। तो आप हैरान क्यों हैं? हमें ये इस बात की हैरानी है कि मोदी जी के अहम को इतनी चोट पहुंची कि वो 400-400 करते हुए 240 पे लड़खड़ा गए, उस अहम को इतनी चोट पहुंची कि अब वो दाएं बाएं से चोरी डकैती करके अपने एमपी खरीदे जा रहे हैं। क्यों खरीद रहे हो साहब, क्या जरूरत है? सरकार चल रही ना आपकी, या भरोसा नहीं है नायडू जी पर, या जनता दल पर भरोसा नहीं है, किस पे भरोसा नहीं है? ये तो सीधे सीधे आप कह रहे हो कि साहब नायडू पर भरोसा नहीं है, नीतीश जी की पार्टी पर भरोसा नहीं है, तो चलिए मैं अपने घर में और चोरी करके एमपी भर लूं। जरूरत क्या है? आपके पास पैसा बहुत है, हम मानते हैं।
11: देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी की लीडरशिप अगर अपने लोगों को समय नहीं देगी और एक्सेसिबल नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है वो देखेगी कोई और पार्टी में जाने के लिए, और यही हो रहा है शिवसेना उबट्टा के साथ। यही हो रहा है कि जब वो सत्ता में थे और जब वो सत्ता में नहीं थे अपने लोगों को कभी समय नहीं देते थे, तो इसीलिए यही होता है कि लोग समय के साथ लोगों के उस नेतृत्व के साथ काम करना चाहेंगे जो अपने अपने जो काम भी करता हो और समय भी देता हो।
12: Now yesterday, the Chief Minister Fadnavis said that Operation Tiger is completed. He said it's a healthy operation, while Eknath Shinde, the Deputy Chief Minister, reaffirmed the success of the operation. This as Uddhav Thackeray hit back at the Mahayuti. Listen in.
13: Laukara tumhala breaking news bhedel. Ami operation ardhavat karat nahi, phulphut karto.
14: ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ आहे। ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ आहे।
15: शिवसेना प्रमुख एकच होऊन गेले, पुन्हा दुसरा शिवसेना प्रमुख होणे नाही, अजिबात होणार नाही। तुझा कोणतरी कुठला तरी पडलेला माणूस उचलून आणून तू कोणतीकडे बसल्याचा, तू जसा तू बसला होता अध्यक्षपदी तसं आज कोणतरी ध्यान बसवलंय। भाजपाला कोणी अध्यक्ष चालतो, पण शिवसेना प्रमुख हे एकमेव, दुसरा शिवसेना प्रमुख होणे नाही, लोक स्वीकारणार नाही। शिवसेनेचा प्रमुख कोण हा उपरा ठरू शकत नाही, तू उपरायस तू उपटून पायस, त्याच्यामुळे तू तुझ्या अवकाशात राहा। त्यांनी त्यांचं घर सांभाळलं, जर त्यांना पंतप्रधान पदाची स्वप्न बघत पडत असतील आणि म्हणून ते दुसऱ्याचे खासदार फोडून स्वतःचा खुंटा भडकात करत असतील, तर तुमच्या खुंट्याला पहिले मुडायचं बघा।
12: All right, breaking news coming in from Maharashtra, and Deputy Chief Minister Eknath Shinde is meeting with the 6 Thackeray MPs. That meeting has begun at his Nandanvan residence. So that's the big breaking news coming in right now. The 6 MPs are meeting with Eknath Shinde. Remember, 6 is key because that is 2/3 of the Shiv Sena Uddhav Thackeray MPs in Parliament. Well, let's go across to Anuj now for more on this story. Anuj, well, we will just be going across to find out more. But remember, this is the key meeting that will finally, you know, confirm the fact that the 6 MPs are jumping ship. They are joining the Shiv Sena, moving away from the Uddhav Thackeray Shiv Sena. For a while, remember, there has been all this speculation. It's been referred to as Operation Tiger in Maharashtra, that 6 MPs, 6 of the 9 MPs that are with Uddhav Thackeray will now leave and join with the Eknath Shinde camp, or the actual Shiv Sena, as it is being referred to now. And this is key because it's 2/3. Earlier there were 5 MPs, but a 6th as well has said that he will be joining Eknath Shinde, which means that 2/3 of the Lok Sabha MPs now are in favor of joining Eknath Shinde. These developments have been going on for a while now. Remember, there was a meeting that was also called in Delhi last week by the Uddhav Thackeray Shiv Sena, the parliamentary party meeting, where these MPs did not turn up. Only 3 MPs actually turned up for that meeting, and therefore the writing was on the wall that these 6 MPs were all set to quit from Uddhav Thackeray and join Eknath Shinde. In fact, it's been talked about how they were protected, even taken around Rajasthan for some time, and they also met with the Speaker Om Birla. So really, after the Trinamool Congress, now the Uddhav Thackeray Shiv Sena also seeing this split, this rebellion, with 6 of their MPs now currently meeting with Eknath Shinde. Well, let's go across to Saurabh Gupta now for more on these developments. And Saurabh, so finally, this will perhaps confirm everything that we've been reporting for the last couple of days. Those 6 MPs now meeting with Eknath Shinde. All right, we will try and get Saurabh back. But that's the big breaking news that we're bringing you right now. Eknath Shinde is meeting with the 6 MPs of Uddhav Thackeray Shiv Sena, who are, we've been reporting about how they are going to be leaving and joining with Eknath Shinde. And let's now shift focus to the NEET exam in Karnataka, where 3 students were late for their re-NEET exam held yesterday, and they were not allowed to sit for the exam. It's become a huge controversy, but it's also become a political slugfest between the Congress and the BJP. Families of the affected aspirants have blamed traffic congestion caused by a Congress event, alleging that it delayed the students from reaching the exam centres on time. The students were denied entry for arriving late, with some also facing document-related issues. Meanwhile, a war of words has erupted, with BJP MP Tejaswi Surya blaming the Congress rally for disrupting the NEET aspirants, Minister Priyank Kharge has defended the government, saying that traffic advisories were issued and that the state cannot be held solely responsible. The BJP also accused the Congress of ignoring students' concerns. Drawing a contrast with Prime Minister Modi, the BJP said that he stayed at the Delhi airport during the exam hours to avoid inconvenience to students, while alleging the Congress went ahead with a large public event despite potential traffic disruptions. The Congress, though, has said that they're going to form a committee and look into the grievances of the students.
16: See, we usually, the venue is around 30 minutes for us. It is 7 to 8 kilometers. At the time of huge traffic, it is 30 minutes. Other way around, it is 20 minutes we can reach. Mm. But when we were traveling yesterday, suddenly the traffic was jammed from this ST Mahal, ST Mahal. Okay. Till there, we were going, passing on, we are unable to. We were totally tensed whether we'll reach the place venue by 1:30 or not. That kind of a tension situation. And I was riding my bike on the footpath and all. Cops were shouting and all. That kind of a ride I did, and somehow we reached at 1:05. Fortunately, we went 20 minutes early. But I started my journey at 10:55 at my house. It is almost 2 hours, 10 minutes it took for seven to eight kilometers to reach.
17: Okay, but so why was there a traffic apparently at that stretch that you're talking about?
16: See, this is what this political menace, this people, they are doing the rally in Palace Ground. It was completely jammed, completely jammed, and a lot of buses and all were stuck there. Reason, people were bought in to the city, to the rally, I think so.
18: KPCC President Mr. B.K. Hariprasad, sir, the BJP is saying that, you know, you have been talking about the cause of NEET, fighting for students, but a rally or the oath-taking ceremony which was held for you led to many students missing out their exams. What would you like to say?
19: Well, I have seen in the newspapers and some of the clippings in the electronic media, 3 students, it seems, have missed their deadline. So if that is the case, I express my deepest regrets for the inconvenience caused because of the because of this traffic jam.

0: 12 years, in the last decade alone, 89 paper leaks have happened. 89 paper leaks. Has Mr. Surya or any of the MPs come out in favor of students? If you are so keen, I challenge you to put the Prime Minister for a pariksha pe charcha karte hai na, Pradhan Mantri. Ek dal dijiye.
1: Students who go for the NEET exam because of state government program, yesterday, several students, they have not attended at the proper time. It has damaged their education, future days. This is really a shameful development by this government.
2: मीडिया में जो समाचार प्राप्त हुए हैं वो बहुत दुखद और चिंताजनक हैं कि कल बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की रैली की वजह से कई परीक्षार्थी नीट की परीक्षा देने से वंचित रह गए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कोटा में जाकर मात्र एग्जाम से 72 घंटे पहले छात्रों को अटेंशन डाइवर्ट करने, भ्रमित करने का कार्य करते हैं, दूसरी तरफ उनकी सरकार छात्रों को जो एग्जाम देने जा रहे थे अपनी पॉलिटिकल रैली के कारण एग्जाम देने से वंचित रह जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि आपको तो नीट के एग्जाम का समय पता था और दिन भी पता था, क्या आप दिन नहीं तो कम से कम अपनी रैली का समय भी नहीं चेंज कर सकते थे? इससे बात स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए राजनीति ऊपर है और छात्र हित नीचे।

0: को अंदर देखिए, ये बाइकें किस तरीके की जली हुई दिखाई दे रही है, ये बता रहा है कि कितनी ज्वलंत ये आग थी, कितनी ज्वलंत ये आग थी। और इस आग का प्रभाव जरा इन व्हीकल्स को देखिए, तमाम तरीके के बाइक्स रखी हैं और भी बड़ी मशीनरी, हैवी मशीनरी पीछे रखी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब बचा क्या है, इसके पीछे सिर्फ धुआं, सब कुछ राख हो चुका है, लोहा मेटल तमाम जो दूसरे धातु है वो भी अब गले हुए यहाँ पर बिखरे दिखाई दे रहे हैं। तो चुनौती अब अंदर को लेकर है, अंदर की तरफ वही प्रयास है कि आधुनिकतम मशीनों के जरिए अंदर जाकर कंट्रोल किया जा सके। तो अब दो फ्लोरों पर इस समय फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच चुकी हैं, ग्राउंड फ्लोर से होते हुए सीढ़ी के रास्ते से भी कुछ कर्मी अभी ऊपर गए हैं। और अब देखिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण स्पॉट है उस पर जाने की कोशिश है, जो सबसे चुनौतीपूर्ण सबसे ऊपर का फ्लोर है जहाँ सबसे ज़्यादा धुआं उठता दिखा, उस पर जाने की कोशिश करते हुए कर्मी दिखाई दे रहे हैं। सीढ़ी लग चुकी है और अब प्रयास है कि उस फ्लोर तक जाया जा सके ताकि जो चुनौती है उसे देखकर आगे इसके रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। फायर ब्रिगेड की टीमें हैं लगातार एक्टिव हैं, यहाँ पे लखनऊ के डीएम पहुँच चुके हैं, कमिश्नर पहुँच चुके हैं, ब्रजेश पाठक उपमंत्री उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ही विधायक भी हैं वो भी पहुँच चुके हैं, हर तरफ एक्शन है। देखिए उधर जेसीबी फिर एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ संकेत जो तार यहाँ लटके हुए थे उन तारों को तोड़ा जा रहा है, तारों को हटाया जा रहा है। पुलिसकर्मी देखिए कैसे अपने हाथों से उस रास्ते को खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि तोड़कर इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंचा जा सके। और जो संकेत हैं वो बड़े डराने वाले हैं, यहाँ जो संकेत दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर के हिस्से में आप देखिए किस तरीके से एक्शन है, सीढ़ी तैयार है, किसी भी पल पुलिसकर्मी और जो फायर ब्रिगेड के कर्मी देखिए ऊपर चढ़ते हुए, फायर के जो कर्मी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और सबसे चुनौतीपूर्ण यही ऊपर का फ्लोर है क्योंकि धुआं जिस मात्रा में ऊपर दिख रहा है वो डराने वाला है। और जो दावे स्थानीय लोग कर रहे हैं कि ऊपर से एक लड़का गिरा था, और जो लोग कुछ बता रहे हैं कि फ़ोन आए हैं ऊपर के ही फ्लोर से आए हैं लेकिन अब कोई फ़ोन नहीं आ रहा है, तो ये डराने वाले विजुअल्स जो हैं, जो जानकारी है वो सबसे ऊपर के फ्लोर से जुड़ी हुई आ रही हैं। अब देखिए वापस उतर के आ गए हैं, संभवतः सीढ़ी में कुछ गड़बड़ी थी और फिर से सीढ़ी को सही जगह पर सेट किया जा रहा है ताकि जा सके और जाकर दिखा सके। तो ये स्थिति है और तमाम यहाँ पर देखिए कैसे पुलिसकर्मी अभी बाहर जो निकल के आए हैं यूपी फायर स्टेशन के, ऊपर से फिर एक पैकेट को गिराया जा रहा है ताकि रास्ते को खोला जा सके। और अब ये बाहर निकल कर आए हैं, जो उनकी जो स्थिति है देखिए उससे समझिए किन चुनौतियों में ये सर काम कर रहे हैं। सर क्या स्टेटस है कुछ अगर आप बताएंगे? सर
1: पहले फ्लोर पर कोई नहीं, सेकंड फ्लोर चेक कर रहे
0: हैं। खबर बड़ी खबर देते हुए फायर स्टेशन के अधिकारी हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर कुछ नहीं है, फर्स्ट फ्लोर चेक कर चुके हैं, सेकंड फ्लोर की तैयारी है, सेकंड फ्लोर पर अब जाना है। सर आग है क्या सेकंड फ्लोर पर?
1: अभी थोड़ा धुआं है,
0: अभी धुआं है ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए एक्सक्लूसिव जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी सबसे, ये अच्छी खबर है, सकारात्मक चीज की, पहला फ्लोर क्लीन है, पहले फ्लोर पर सिर्फ धुआं है, पहले फ्लोर पर कोई दूसरी चुनौती नहीं है। तो यहां पर फर्स्ट फ्लोर अब क्लीन है ये बताते हुए। और अब देखिए वो सबसे बड़ी चुनौती जो सबसे ऊपर का फ्लोर है जिसको लेकर तमाम जानकारियां आई हैं सामने, अब उस फ्लोर की तरफ बढ़ते हुए फायर ब्रिगेड के कर्मी दिखाई दे रहे हैं। धुआं उठिए किस तरह से उठ रहा है उसे देखिए, धुएं की चुनौती देखिए, धुएं की चुनौती कैसी है। इन चुनौतियों के बीच में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के अलग अलग प्रयास है और कतारबद्ध लगातार अब देखिए फायर ब्रिगेड के कर्मी चढ़ते चले जा रहे हैं। और इस बार भी हमने पिछली बार दिखाया कि ऑक्सीजन सिलेंडर के संग जा रहे हैं कोई, लेकिन इस बार के गेयर तो और भी एडवांस है। देखिए इन गेयर्स को देखिए, ये कपड़ा जो है ये फायर प्रूफ कपड़ा है, प्रयास ये है कि इस कपड़े से रेस्क्यू के लिए अंदर जाए। और साथ में किट है पूरी, जो धुएं के बीच में अंदर जाने के लिए महत्वपूर्ण गैजेट्स होते हैं उन गैजेट्स को लेकर जाते हुए यहाँ पर पहने हुए, धारण किए हुए उन गैजेट्स को दिखाई दे रहे हैं। हेलमेट लगातार यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए बड़ी खबर है ये लखनऊ से, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं एनडीटीवी पे।
2: All right, today you saw Ajay Dubey at the spot reporting on this horrific fire that broke out at a coaching center. And, you know, viewers, just discretion advised that it's disturbing visuals of a person actually jumping down from that first floor. He hits the fence there and then is dragged away by bystanders. So right now we don't know, you know, the extent of the injuries in this fire, but as you can see, a massive fire.

0: यहाँ पर पहने हुए धारण किए हुए उन गैजेट्स को दिखाई दे रहे हैं। हेलमेट लगातार यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए बड़ी खबर है ये, लखनऊ से इस पर लगातार नजर बनी हुई है। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं एनडीटीवी पे।
1: Alright, so there you saw Ajay Dubey at the spot reporting on this horrific fire that broke out at a coaching center. And you know, viewers, just discretion advised, that it's disturbing visuals of a person actually jumping down from that first floor. He hits the fence there and then is dragged away by bystanders. So right now we don't know the extent of the injuries in this fire, but as you can see, a massive fire.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Right, we're getting you some breaking news right now. This is regarding the blaze at a coaching center there in Lucknow, which turned into a devastating tragedy, claiming the lives of 5 people so far. The death toll that was earlier 2 has now mounted to 5. The massive fire triggered scenes of panic as students and staff scrambled to escape thick smoke and rapidly spreading fires. This tragedy took place at a coaching center in Lucknow's Aliganj area, which is situated in the northwestern part of the city. But the latest coming in is, of course, safety lapses have come under the scanner. And the death toll has mounted to 5. Take a listen to what our reporter Ajay Dubey has sent us from Lucknow.
1: 11 bodies ko nikal kar ambulance tak yahan par bheja ja chuka hai aur lagatar stretchers jo hain fir se andar bheje ja rahe hain. To ye behad hi dardnak ghatna Lucknow mein ghati hai. Tasveere ab aapko jo live action uski dikhate hain, aapko pehle dikhate chale samne frame par aapko Uttar Pradesh ke ACS home dikhai denge Sanjay Prasad. Iske alawa DGP bhi maujood hain, jo DG fire brigade hain wo bhi khade hain, Lucknow ke commissioner, Lucknow ke DM, tamam adhikari maujood hain aur nazar banaye hue hain. Jinke parijan yahan par the wo har taraf se wo log maujood hain, apna dukh zahir kar rahe hain, lagatar virodh प्रशासन का कर रहे हैं. लेकिन अब तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ हो रहा है. इन तस्वीरों में लगातार जो घटनाक्रम यहाँ की है, पीछे हटने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा उचित सेफ दूरी, राजेश जी से दूरी में रहिए. लगातार जो प्रशासन के लोग हैं, अब जरा पूरे बाहर के आपको विजुअल्स दिखाते हैं. यहाँ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं उन्हें दिखाते हैं. ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और लोगों की भीड़ से अंदाज़ा लगाइए क्या दर्दनाक घटना घटी है यहाँ पर. देखिए, ये सामने एम्बुलेंस है और डेड बॉडीज़ को उन एम्बुलेंस तक लगातार पहुँचाया जा रहा है. हमने गिना है, तकरीबन 11 का आंकड़ा हो चुका है. डेड बॉडीज़ जो पहुँच चुकी हैं एम्बुलेंस में, लगातार एम्बुलेंस आ रही है, डेड बॉडीज़ रखी जा रही हैं. और देखिए, अब एक और डेड बॉडी दिखाई दे रहा है. बॉडी बैग में डेड बॉडी को लेकर ये जो फायर ब्रिगेड की टीम है वहाँ पर पहुँच रहे हैं. और देखिए, अभी सीधे इस बैग को एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा है. तो लगातार आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है. तस्वीरें देखिए, कतारबद्ध खड़ी फायर ब्रिगेड की इन गाड़ियों को देखिए, उठते धुएं को देखिए. ये दर्द, ये दर्दनाक घटना, ये पीड़ादायी घटना लखनऊ में जो घटी है. लगातार फायर ब्रिगेड प्रयास कर रहा है कि आग पर काबू हो. आग तकरीबन काबू की जा चुकी है, लेकिन जो धुआं है, उठता वो धुआं अपने पीछे जो दर्द की कहानी बयां कर रहा है, जो घटना घटी है. फिर एक बार चलते हैं उस तरफ जहाँ से डेड बॉडीज को निकाला जा रहा है, उस तरफ लेकर चलते हैं. अधिकारियों से भी संवाद करने की हम कोशिश कर रहे हैं. देखिए कैसे घटना घटी, जो जानकारी मिली फर्स्ट फ्लोर पर सबसे पहले जहां पर पेट फूड की दुकान थी वहां ये आग लगती है, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया. और उसके बाद आग फैलती पूरी इमारत में जाती है. सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर था, सबसे ज्यादा भीड़ वहां पर थी, ये बताया लोगों ने. अब देखिए, ये जो स्ट्रेचर्स हैं लगातार ऊपर पहुंचाए जा रहे हैं. 11 का आंकड़ा पूरा हो चुका है, स्ट्रेचर्स लगातार ऊपर पहुंचाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है. कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उनके परिजनों का जब उन्हें फोन आया, वो भागे भागे आए, उनकी तरफ से बताया गया कि अंदर जो ऊपर का फ्लोर है सबसे, उसके बाथरूम में लोग हैं और ये वो चुनौतीपूर्ण स्थिति है. तो अपनी बातों को भी बताया. आप जरा देखिए कैसे धुआं लगातार अभी भी उठ रहा है, अंदर क्या चुनौतियां. देखिए डीजीपी उत्तर प्रदेश की दिखाई देंगे आपको, आगे बढ़कर क्या यथास्थिति है उसे समझने की डीजीपी कोशिश कर रहे हैं. दीवालों में जो गड्ढा बनाया गया है वहां से लगातार बॉडीज जो है वो बाहर निकल के आ रही है. 11 का आंकड़ा पूरा हो चुका है. दर्दनाक ये घटना लखनऊ में घटी है. और अब सवाल प्रशासन के लिए भी है कि क्या अनुमति, किस तरह की परमिशन इन इमारतों को, इन प्राइवेट इमारतों को लेकर दी गई है, जहाँ ये इस तरीके की कोचिंग्स खासतौर पर चलती हैं, जहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, जहाँ पर जो इंतजाम नहीं होते हैं सुरक्षा के, उनकी भी चुनौतियाँ कैसी हैं. देखिए अभी भी आप देखेंगे जो मॉडर्न मशीनरी है फायर ब्रिगेड की, वो लगातार पानी प्रेशर से फर्स्ट फ्लोर पर डाल रही है कि आग काबू की जा सके. आग तो तकरीबन बुझ चुकी है, लेकिन जो धुआं, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट जो होता है, जो आयरन, अलग तरह के मेटल्स, उनमें एक ताप होता है, उसको ठंडा करने की कोशिश है. और आप देखेंगे डीजी फायर भी वहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं. तो तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में लगातार डेड बॉडीज़ को निकाला जा रहा है. अंदर SDRF की टीम गई है. SDRF की टीम जब पहुंची है, तो पहुंचने के साथ ही वो अपनी मशीनरी, इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो होती है उनको लेकर आई है. SDRF की टीम की प्राथमिकता ये है कि अंदर जो धुआं है, सबसे बड़ी चुनौती इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वो धुआं है, उसे बाहर निकाला जा सके. देखिए वो दो छेद देखिए, जब पीछे की तरफ.
0: ऑलराइट, वी कमिंग क्रॉस टू अनदर बिग न्यूज. एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस हैज बिगन, बट द 6 UBT रेबल MPs विल नाउ टेल अस देयर रीजंस एज टू व्हाई दे हैव लेफ्ट द UBT शिवसेना कैंप एंड दे हैव now jumped ship and joined the Eknath Shinde camp. Earlier, of course, they met Eknath Shinde at the residence, and on his screens right now, 6 rebel MPs who will be in moments from now holding that press conference and completely coming out and confirming that they have now joined the Eknath Shinde camp. This is, of course, a huge split 2.0 for Shiv Sena right now. All right, my colleague Saurabh Gupta has been tracking the story very closely. Saurabh, in just seconds from now, we will have the six UBT rebel MPs there with Eknath Shinde giving that press conference and confirming their announcement and that they have joined the Eknath Shinde camp. Tell us more about that.
2: That's right. You know, the political ramifications and the reasons, the political reasons, so to speak, for their decision to leave the Shiv Sena UBT after having been elected on a Shiv Sena UBT ticket following an earlier split. They stayed with the party, but these MPs have now also decided to switch sides. And they've said that they will publicly reveal the reasons for doing so, which is why they're holding this press conference at the Yashwant Rao Chavan Center in South Mumbai. Eknath Shinde, the Deputy Chief Minister of Maharashtra, has arrived just a short while ago. He was accompanied in a car, tailing his car, by Sanjay Dina Patil, again, one of the rebel MPs, who we believe was a little late in reaching the meeting at Eknath Shinde's, at Nandanwan a few minutes ago. But Sanjay Dina Patil has arrived, and that press conference, like you said, is expected to begin. This is political turmoil in Maharashtra. It's been a season of splits from West Bengal to Maharashtra. Whether it's the Trinamool Congress or the Shiv Sena UBT, this has happened across political parties, the opposition rung. And that's something that obviously has led to a counterattack, especially from the Shiv Sena UBT in this case, with Aditya Thackeray calling them, traitors, calling them people who've, been sold. But the rebel MPs camp say that they have valid reasons, politically valid reasons for their decision, and that's what they're going to share at the press conference. But this is going to be a volatile political issue,
0: right,
2: so Saurabh, to speak.
0: Stay with us, stay with us. Let's just listen into that press conference, the rebels, six rebels with Eknath Shinde on stage.
3: Nagesh Patil Astikar, Hingoli Lokasabha Sabha Mandha, Pahili Vela Kroon Aalile. Tetra Aplai Vishi Shanti, पण पहिली गोष्ट मी विनंती करेन शिंदे साहेब या सर्व कार्यक्रमाच्या बाबत ही सर्व मीडिया जी काय उत्सुक आहे त्याला आपण मार्गदर्शन करावं आणि आपण त्यांना सांगावं त्याच्यानंतर आपल्या पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात
4: करतात. मेळाव्यामध्ये मी उभा राहिलो होतो आणि एक वाक्य म्हणालो होतो मी, तर आता एक नाही सहा टायगर इथे उपस्थित आहे. आणि त्यांचा
5: एक मिनिट तुम्ही या तिघ तिकडे तुम्ही या तिघ इकडे
6: माध्यम प्रमुखाला विनंती करतोय थोडा आवाज आवाज
2: pictures coming in from these pictures coming in from the YB Chavan Center. This is, of course, Eknath Shinde, holding hands. You can see, of course, those MPs there. Sanjay Dina Patil from Mumbai Northeast, Sanjay Jadhav from Parbhani, Sanjay Deshmukh from Yavatmal Vashim. Then, of course, you have Om Rajin, Nimbalkar from Dharashiv. And then you have also, Bhav Sahib Rajaram Vakchore from Shirdi. And then also you have, the other.
4: Saha Khasdar. Now, Magashi Ghetle, Mi Puna Ghetto. Ite Maja Bajula, Om Raje Nimbalkar Ahe. Ite Bhav Sahib Vakchore Ahe. आपला सगळ्यात लाडका संजय इकडे संजय बंडू जाधव आहेत. डॉक्टर संजय देशमुख आहेत आणि इकडे नागेश आष्टीकर आहेत. म्हणजे ट्रिपल संजय, तीन संजय. आता बघा आपल्याकडे तीन संजय आहेत. कोणाला घ्यायचं? नाही, आमच्याकडे चौथा संजय राठोड आहे. भरपूर संजय आहे. आता त्यामुळे बाकी मी कुणाच्या बद्दल बोलतोय ते सांगायची आवश्यकता नाही. आता इथे ट्रिपल संजय असल्यावर मग बाकी कुणाची गिनती? आपल्या संजय बद्दल नाही, आपले खरं म्हणजे आजच्या या पत्रकार
7: नाही. आता इथे ट्रिपल संजय असल्यावर मग बाकी कुणाची गिनती? आपल्या संजय बद्दल नाही, आपले आपलीच आहेत खरं म्हणजे आजच्या या पत्रकार परिषदेला
2: उपस्थित दिस प्रेस कॉन्फरन्स
7: पत्रकार परिषदेत उपस्थित आपले शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते
2: दोज वर प्रेझेंट हियर
7: कदमजी, आपले दुसरे नेते गजाभाऊ
2: सिनियर शिवसेना लीडर रामदास कदम,
7: तिकडे गुलाबराव पाटील,
2: गजानन कीर्तिकर
7: आणि बाकी सर्व आपले मंत्री आहेत समोर, मागे मंत्री आहेत, बाकी आपले खासदार आहेत सगळे,
2: अँड ऑल द मिनिस्टर्स अँड एक्स मिनिस्टर्स अँड MPs
7: आणि सगळा आपला समोर खासदार आहेत, आमदार आहेत, सर्व आमचं हे शिवसेना आहे, कुटुंब आहे, परिवार आहे.
2: देर आर MPs अँड MLAs प्रेझेंट हिअर
7: शिवसेना परिवारामध्ये.
2: देर ऑल पार्ट ऑफ द शिवसेना फॅमिली.
7: शिवसेना परिवारामध्ये बाळासाहेबांच्या विचारांच्या शिवसेना परिवारामध्ये.
2: अँड दे आर एंटरिंग द रिअल शिवसेना फॅमिली दॅट फॉलोज द आयडियॉलॉजी ऑफ बाळासाहेब ठाकरे अँड आनंद दिघे.
7: सामील झालेले आहेत.
2: दीज आर हार्डकोर शिवसैनिक हू आर मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट.
7: आणि
2: आय वेलकम देम फ्रॉम माय हार्ट इन टू द शिवसेना.
7: गेले 22-24 वर्षापूर्वी, अरे ते आपलं हे राहिलं ना, ते प्रक्रिया करायची ती बोलल्यावर चालेल. चार वर्षापूर्वी 22 जून 2022
2: अगो
7: शिवसेने
2: ऑन

0: ओपनिंग बॅट्समन, तो कोणाच्या मध्ये जात नाही, पण त्याच्या वाटेला जर
1: नाव
0: नागेश आहे. प्रत्येकाचं एक विशेष काहीतरी आहे. इथं भाऊसाहेब आहेत, गावात पण
1: इश्यू आहे.
0: म्हणजे भाऊ आपला लाडकी बहीण योजना राबवणाऱ्या बरोबर यायलाच पाहिजे. त्यामुळे हे असे हे कार्यकर्ते आणि हे स्वतःच्या
1: लाडकी बहीण योजना
0: आलेलं नाही
1: मतदारसंघातल्या. They have not come for their individual gains or individual interests.
0: हे सर्व लोक शिवसेनेत आलेत.
1: They have come to give people justice and to work for the development of the people.
0: दुर्दैवाने दुर्दैवी निकाल लागला, अनपेक्षित निकाल लागला. मी त्या दिवशी त्यांना सांगितलं.
1: His father was facing a case.
0: शिंदे तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे, शिवसेना तुमच्या पाठीशी.
1: And I want to tell him that Eknath Shinde is standing solidly behind him.
0: लोक म्हणतात आम्ही कोणालाही अडवायला नाही, तुडवायला नाही. आम्ही शिवसेना वाढवायला आलेलो आहे, पण आम्ही कुणाचे आडवे जात.
1: But we say that we don't want to break anyone or we don't want to make anyone defect. We just want to make sure that the Shivsena grows.
0: आणि म्हणून 2022 चा देखील उठाव आपण पाहिलेला आहे. या काळात देखील आपण पाहिलंय, बघितलंय.
1: And since 2022, from the beginning, the start, and the beginning,
0: Baba Sahebanche vichardhara,
1: and we've been fighting for an ideology since then,
0: dusra vichar,
1: which is Bala Saheb's ideology.
0: Eva kay paristhiti hoti apan saglyani pahili.
1: We started this rebellion, or we started this movement, because there was another ideology that came.
0: Maharashtra pude gela.
1: Development work has been done in this state. Maharashtra has moved forward. Lot of schemes have been implemented, including the Ladki Bahin scheme.
0: To sarvasamanya jantene swikarla
1: lokancha the decision we took in 2022, that decision was accepted by the people.
0: Ani jantene dekhil ya Maharashtratla tamam jantene,
1: we went to the people
0: ani yacho.
1: And the people of Maharashtra accepted it.
0: Yavet dekhil kahi lok mi bhashanat dekhil kadhi kadhi mhanto.
1: And those 40 MLAs,
0: pan mi tyaves manalo hoto.
1: Some people said none of them would be elected.
0: Rajinama delin gavala sheti karal lokun jay. 40 amdar hote 60 amdar.
1: I had said that if they don't get elected, I would resign and go back to farming in my village.
0: Hote kai lokani ik pani dani chal pan lokani.
1: When I went back to my village, some people's stomachs started aching.
0: Amala swikarle patimba dila, amdar pan ale, khasdar pan ale.
1: We went to the people's court, people supported us and people stood behind us.
0: Sarpanch jale,
1: we got cooperators, we got the you know, we got mayors, we got
0: itihas apan,
1: and the Shivsena has grown across the state.
0: Karan amchi niti spashta hoti.
1: This is the history of the last
0: amchi niyat swachh hoti
1: 2 to 4 years. Our
0: vichardharela ghevun ami pude gelo.
1: Ideology and our policy was clear, our intentions were clear. We went forward with our ideology in place, which is the Hindutva ideology.
0: Tya kala madhe keli puna ami yuti madhe samil jho.
1: The alliance formed by Atalji and Bala Saheb,
0: vichardhara mahatvachi aahe,
1: and we formed that alliance.
0: Kai lokani vichardhara sodli,
1: and the ideology is the most important.
0: Ani manun Maharashtra je rajya hai,
1: other rajyan the others, the people of Maharashtra have rejected them.
0: Aplo culture vegla hai, sanskriti.
1: Maharashtra is different from other states.
0: Parampara vegli hai,
1: our culture, our traditions are different, and people,
0: ani manun jo paata hai apan,
1: what they feel, what is in their mind,
0: shivsene madhe लोक येतात विचारधारेशी जुळतात.
1: And that's why we can see
0: याचं कारण एवढंच आहे.
1: How people are joining the Shiv Sena in large numbers.
0: अजेंडा विकास.
1: And the reason for that is
0: आपला अजेंडा गोर गरिबाच्या आयुष्यामध्ये.
1: And the reason for that is that our agenda is development. Our agenda is to bring change to the lives of the poor people.
0: The palnari Shiv Sena आहे. ही मोठी कॅपेबिलिटी आपली आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये आणि त्यामुळे हा प्रचंड मोठ्या
1: प्रमाणावर
0: आपल्याकडे येण्याचा वोग सुरू आहे. आता
1: पीपल आर कमिंग टू अस इन लार्ज नंबर्स टुडे.
0: यामध्ये 7,000 आपल्या सोबत आलेले आहेत. तेही त्यांच्या मतदारसंघात.
1: 6 members of parliament have joined hands with us and in their parliamentary constituencies for lakhs of constituents they have been elected by those lakhs of constituents and
0: itli janta
1: and our workers our party leaders there
0: yata
1: and all these people the strength of these people these 6 people these 6 MPs
0: ani je khasdar aplyakade alele ahet
1: shiddha Shiv Sena will be strengthened
0: natli kama vikas kama
1: and the members of parliament who have come to us
0: prakalpa
1: to get work done in their constituencies
0: ye pramanik pane sodavnyacha kam
1: and to ensure schemes reach their constituencies
0: a Eknath Shinde cha shabd ahe
1: that work will be ensured by the Shiv Sena and this is a promise by Eknath Shinde and I always keep my word that you know
0: Eknath Shinde var vishwas thevto mi mukhyamantri hoto tyahi veles karyakarta mhanunach vaglo.
1: The people of Maharashtra pose faith in Eknath Shinde as an ordinary worker.
0: Ha karyakartyancha paksh ahe.
1: Te
0: ite apan
1: see Eknath Shinde as a worker.
0: सर्व माझे खासदार आता जे 7,000 आले
1: त्यांना देयर आर सो मेनी पीपल हु आर माय
0: कोणी मालक नाही इथे सगळे आपण
1: कॉलीग्स. आय वॉन्ट टू टेल एव्हरी वन हुअर ऑल दी 6 मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट
0: त्यामुळे एकनाथ शिंदे देखील
1: दॅट वी आर नॉट लीडर्स बट वी आर वर्कर्स.
0: मान सन्मान
1: एकनाथ शिंदे
0: आपला आदर राखेल आपल्या
1: अँड एकनाथ शिंदे विल ट्रीट यू लाईक
0: तुमच्या का सोबत असलेल्या कार्यकर्त्यांचा मान सन्मान राखला जाईल.
1: पीपल हु वर्क अँड विल रिस्पेक्ट
0: पण शेवटी
1: युअर कॉन्स्टिट्युएंट्स
0: त्यामुळे कुटुंब म्हणून
1: अँड वी आर ऑल कम टू वन फॅमिली अँड लाईक फॅमिली मेंबर्स we will work together in the future
0: je je kai vikasasathi avashyak aahe
1: and in the coming days
0: sar sangamade avashyak ja babi aahe
1: whatever is required for development
0: double engine sarkar aahe rajya
1: whatever your demands are
0: ani mhanje double engine sarkar madhe
1: remember there is a double engine government
0: ani mhanun ja
1: and this government will ensure the work gets done
0: vishwasala kadapi tada
1: and
0: shinde jau denar nahi.
1: That is why we've all come together and that is the belief with which we've come together.
0: Mantri ya amcha mantryancha barobar dekhil
1: all our leaders all our MPs MLAs and ministers
0: ye dekhil titlya tithe aplyala odavta yetil indrashi nigadit je kai prashna ahet te dekhil aplyala
1: and whatever issues you have whatever is related to the state government whether it's related to the union government we will ensure those issues get resolved and there will be no issues there will be no roadblocks I assure you that
0: adhik mazboot karayche hai Shiv Sena vadvayche hai Shiv Sena
1: gava all of us have to get together and further strengthen the Shiv Sena and make it grow and make it reach every village and every home and your cooperation and
0: adhik bhakkam adhik mazboot
1: by coming together
0: a vishwas ya tikani vyakt
1: will create a much stronger Shiv Sena in Maharashtra
0: karane mi ya tikani sangu ichhito tumcho kay
1: and I want to tell reporters at this point here
0: tiger operation tiger koni kay chalvat hoto koni kay chalvat
1: operation tiger is was something that you used
0: pan mi aplyala sang
1: you all were running this
0: kalai manalo आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करतो.
1: आय वॉन्ट टेल यू
0: प्रूफ करतो फुल प्रूफ. आणि
1: वी ऑलवेज कंडक्ट फुल प्रूफ ऑपरेशन.
0: सांगण्याची आवश्यकता नाही, समोर आहे सगळं. त्यामुळे
1: अँड देयर इज नो नीड टू से इट, एव्हरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू टुडे.
0: आणि
1: अँड व्हॉट एव्हर द प्रोसेसेस आर, वी हैव कंप्लीटेड दोज प्रोसेसेस. And all these six MPs are joining the Shiv Sena.
0: Operation Tiger, full proof success.
1: And you reporters have named it Operation Success Tiger. This Operation Tiger is now completely succeeded in a full proof manner.
0: Aple swagat karto.
1: Once again, I want to welcome them into the Shiv Sena family.
0: Operation Tiger success. In 2022, the first operation was in 2022. After 2022, there were 40 MLA in the beginning. Now, our 6,000 have come in the same. क्रिकेट में क्या कहते हैं, षटकार, सिक्सर. और सभी लोगों का परिचय मैंने कराया है. एक से बढ़कर एक सब हमारे जमीन से जुड़े हुए हमारे खासदार है. धुरंधर है, धुरंधर. और सभी लोग अपनी अपनी ताकत अपने अपने चुनाव क्षेत्र में मजबूती से चुनकर आए. ये जो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, ये स्वार्थ के लिए गए, इनके लिए गए, उसके लिए गए, कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं. अभी जब उनके पास थे तो सब अच्छे थे, मैं भी था, अच्छा था. मैं जब बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए गया तो बुरा हो गया. अभी ये सब लोग क्यों जा रहे हैं, इसका आत्मचिंतन आत्म परीक्षण करना चाहिए. न कि जो जाते हैं उनको दोष देवे. सुबह गाली देते हैं और शाम को बोलते हैं अच्छे है, अच्छे है. ये भी करके देखा उन्होंने, लेकिन ये केमिकल लोचा वाले लोग हैं तो जाने दो, मुझे कुछ बोलना नहीं ज्यादा. लेकिन ये छह खासदार जो है, ये ओम राजे निंबाळकर, भाऊसाहेब वाकसोरे, संजय दीना पाटिल, यहाँ पर हमारे संजय बंडू जाधव, संजय देशमुख, नागेश अष्टीकर, ये सब लोग पूरे अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके अपने चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए और जो भी किसके जो जो प्रॉब्लम्स है, कुछ अभी मैं ओम राजे के बारे में बता दिया है, अभी फिर से मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन जैसे चुनाव क्षेत्र में विकास की बात है, वैसे पारिवारिक भी कुछ भी तकलीफ है उसके पीछे एकनाथ शिंदे खड़ा है. कुछ भी व्यक्तिगत उनकी तकलीफ है उसके लिए हमारा साथ है, हम साथ हैं. और मैं एक बार कमिटमेंट करता हूँ तो फिर मैं फिर खुद की भी नहीं सुनता हूँ, ये मेरा स्वभाव है और ऐसे ही रहना चाहिए. ये बाला साहब ठाकरे जी ने हमें सिखाया है, ये आनंदीगे साहब ने सिखाया है. और इसलिए आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है. हमारे छह खासदार शिवसेना में शामिल हुए हैं, शिवसेना परिवार में शामिल हुए, बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा में शामिल हुए, धर्मवीर आनंदीगे साहब की विचारधारा में शामिल हुए. इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है, शिवसेना बढ़ रही है, शिवसेना चांदा से बांदा पहुंच रही है. कई लोग हमारे टिंगल करते थे, मजाक करते थे, शिवसेना ठाणे तक है. मैं उन्हें कहा अभी देखो, शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है. और ये डबल इंजन की सरकार है. महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है. गृह मंत्री अमित भाई सहयोग कर रहे हैं, इसलिए डबल इंजन की सरकार ये महाराष्ट्र में है, इसीलिए ये हमारे सभी साथी जो छह सहयोगी सांसद है उन्होंने बहुत सोच समझकर उनकी चुनाव क्षेत्र के जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए, कार्यकर्ताओं के हित के लिए ये सब निर्णय लिया है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी लोग आज तरह तरह की बातें करते हैं उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, गलत सलत आप जब 2022 से गालियां देना है दे दो, जितनी गालियां देते रहोगे उतने खड्डे में जाते रहोगे, जाओ खड्डे में। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा हम काम कर रहे, काम करने वाले लोग हैं। 2.5 साल का मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल भी आपने देखा है, कितने डेवलपमेंट के काम हुए, विकास के हुए, कई लड़की लाडली बहन जैसे कई स्कीम जो है वो भी हो गई शुरू। आज भी महाराष्ट्र आगे जा रहा है, देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री है, हम टीम बनकर काम कर रहे, इस महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे, और इसलिए केंद्र का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें है। इसीलिए राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे जो महाराष्ट्र के
2: All right, we're shifting our focus to other big news. This is, of course, the tragedy that unfolded in Lucknow's coaching center there in Aliganj. The death toll has now risen to 13 from 11 a few moments ago. The PMO has taken to X and they've written, I'm quoting here, anguished by the loss of lives in a fire mishap in Lucknow in Uttar Pradesh. My condolences to the families. May the injured recover at the earliest. Rescue operations are underway and authorities are providing all possible assistance. Well, an ex-gray share of rupees 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given rupees 50,000. That's the update from the Prime Minister's office. This, of course, a tragedy that broke out earlier this evening. Prime Minister Modi has condoled the death. At least 13 students have died in the fire tragedy in Lucknow's Aliganj, while various students, staff, they have also been injured in the fire tragedy. There are, of course, various questions being arisen on the safety standards and the safety protocols after the fire broke out in a coaching center in Lucknow's Aliganj. Take a listen to the reactions coming in on this tragedy.
3: अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था, बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे, और उसमें अचानक घटना कैसी इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए।
4: कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे थे शामिल?
3: अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा, 14 में
5: देखा होगा आपने, किस तरीके
3: दीवाल तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था तो दीवाल तोड़ करके अंदर गए, वहां मैं था, बहुत दुखद घटना।
2: All of my colleague Ajay Dubhav is tracking the story very closely, is now joining me. Ajay, the death toll is increasing by the minute. It stands at 14 as we speak. Rescue operation is underway, but tell us more about what is happening on ground right now.
6: Definitely, this number will increase surely. And let me show you the visuals right now. I can show you there are many of fire brigades are there, and the road is blocked now, because in a while Chief Minister will also reach to the spot. The security related with Chief Minister has arrived and they are doing the security arrangements on the spot. So the visuals, what we are trying to show you is that the road is blocked now and continuously ambulances are coming because the dead bodies are continuously coming out. So these ambulances are continuously coming out and the number is increasing. That is what they are expecting. And right now the rescue operation is going on. Again, we are heading towards the building and I will show you the visuals. As CM informed that the ACS home and the DGP, they both have arrived on the spot. We'll show you the visuals, right? They are the ACS home, Sanjay Prasad, and the DGP, Mr. Rajiv Krishnan, he's standing right in front of the building, and with him, the DG Fire, Sujit Pandey, is also standing right there. Chief Minister informed that they will prepare a report and show him. Chief Minister is coming back from Bulandshahr, where he was for some he reached for some political event, and he also informed that what happened in Lucknow, the rescue operation is going on, and he is also coming back to Lucknow. So again, we'll be showing you the visual. Rescue operation is continuously going on. As you can see, the police person.

0: they are also trying to clean the path so that the vehicles can come and go. So this is what is happening right now in Lucknow.
1: As of now, what we do know is that rescue operation is underway. Of course, we are showing you live visuals of the fire brigade ambulances on site. But of course, we don't know why this tragedy unfolded. The chief minister will be reaching the spot shortly. But do we have any information on any kind of safety lapses that led to this tragedy, which has taken the lives of at least 14 people so far at a coaching and gaming hub in Lucknow's Ali Ganj?
0: Definitely, the reason will be looked after later on. But as we can show you in visuals also, as we can see, the fire is still on and the rescue operation is going on right now. The fire brigade team, they are continuously trying to throw water on the spot so that things can get cooled down. And continuously, here I am joined by Joint CP Bablu Kumar. Babluji, kuch abhi sir bolenge kya? देखिए तो अभी राइट नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स कंफर्टेबल दे आर ट्राइंग टू डू द रेस्क्यू ऑपरेशन एंड अपार्ट फ्रॉम रेस्क्यू ऑपरेशन वी ऑल ऑल्सो ट्राइंग टू गेट द मोर एंड मोर डिटेल्स अबाउट द थिंग बट द रेस्क्यू ऑपरेशन इज स्टिल गोइंग ऑन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आर ऑन द स्पॉट दे आर डूइंग देयर जॉब्स एज इन्फॉर्म्ड बाय द चीफ मिनिस्टर दैट दे विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द स्पॉट एंड अपार्ट फ्रॉम द ब्यूरोक्रेट्स द डीएम ऑफ लखनऊ द कमिश्नर ऑफ लखनऊ ही इज ऑल्सो ऑन द स्पॉट एंड एज वी कैन सी द रेस्क्यू ऑपरेशन इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन इन लखनऊ.
1: You can also just show us around about the situation as we speak with ambulances on site and also fire brigade there. We're also learning that firefighters, police personnel, NDRF, it's all hands on situation right now as we're also learning that a lot of students are also trapped inside that coaching hub.
0: Definitely, the fire brigade, the Lucknow police and other part of the government, they are active on the spot. Let me show you the visuals of the fire brigade team. And apart from that, let me show you the ambulance. आप भी रेस्क्यू लेके जा रहे हैं अस्पताल अभी तक कोई गया आपकी गाड़ी से कोई गया
2: अभी आ रहा मरीज लेके मरीज
0: अभी लेके तो नहीं गए
2: किसी ने
0: देखिए अगेन वी विल ट्राई एंड टॉक टू द पीपल रिलेटेड विद द एम्बुलेंस भैया आप लेके गए क्या अभी तक
3: हाँ जी जी
0: क्या है डेड बॉडी थी
3: जी डेड बॉडी है
0: क्या कुछ दिखा कि चल गए हैं क्या कारण रहा
3: नहीं
0: आपके डेड बॉडी लेके गए
3: हम एक अभी तक लेके गए हैं सर जी सर
0: डेड बॉडी थी
3: जी बिल्कुल
0: आप लोग भी लेके गए भैया आप लोग
4: अभी पेशेंट नहीं मिला हम लोग
5: नहीं सर अभी गाड़ी खड़ी पेशेंट नहीं मिला
0: सो सी एज यू कैन सी देयर इज कंटीन्यूअस एम्बुलेंस standing right away they are waiting for their
1: shortly the UPCM has condoled the deaths there at the Lucknow coaching center take a listen to what he said
6: meri hardik ichcha thi yaar ki main aligarh mein rahu lekin mujhe dukh ke sath kehna pad raha hai ki abhi mujhe turant jankari mili hai lucknow mein ek durghatna hui hai वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पर जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा.
1: The UPCM there condoling the death of at least 14 people who've died in that fire tragedy in Lucknow's coaching center and gaming hub in Lucknow's Ali Ganj. He has clearly said that he will be coming back to Lucknow to see what is happening after that tragedy unfolded. The Prime Minister has also condoled the death and an ex gratia has been announced. But as we speak, 14 people have lost their lives because of that fire tragedy in that coaching center, Lucknow's Ali Ganj. I'm going to go back to my colleague, Ajay, who's joining me live from on ground there where the fire broke out. Ajay, of course, the cause for this fire tragedy will be ascertained later.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्द्र मसाला।
4: साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, जिंदल साथी सील साथी रे।

0: आपने आप जब हम पूछते हैं कि आप हम लोग प्रभु का मानने वाले लोग हैं, प्रभु के आदर्श आचरण पे चलने वाले लोग हैं, अगर वहां गड़बड़ी हुई है तो जांच कराने की हमारे सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में जांच करवानी चाहिए थी, एक बात। दूसरी बात, आप कहते हो कि नहीं नहीं हम लोग देखिए, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी डिबेट में नहीं आ रही है। जो प्रभु राम की बात करती थी, आज प्रभु के राम के पे घर पे चोरी के संबंध में बात करने के लिए टीवी पे आ ही नहीं रही है, चेहरा वो सामने फेस नहीं कर पा रहे हैं हम लोगों को। क्यों नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी? पाक साफ है तो आइए सामने बोलिए कि जो समाजवादी पार्टी कह रही है, आइए मिलके हम लोग सब लोग जांच कराते हैं, सच का दूध पानी का पानी हो जाए। भाई हम जो कह रहे हैं, आइए मेरे साथ मिलके, प्रभु के यहाँ चोरी की बात है ना, तो उसमें आ हुए हैं इधर उधर की बात,
1: गिल्टी कॉन्शियंस
0: इतने सवाल उठाए, तो आइए मेरे साथ मिलके कि जांच करवाते हैं साथ में। और लोगों को पता चलना चाहिए। तो आपके मन में
2: चोरी
0: भागने से डर रहे हो, क्यों आप प्रभु के नाम पे यहाँ पे जब वहाँ पे चोरी की बात, देखो इसके पहले जब जमीन में गड़बड़ी हुई थी 2 करोड़ की 18 करोड़ हुई तो समाजवादियों ने आवाज उठाई थी ना।
1: अच्छा उन्हें जवाब देने दीजिए, गिल्टी कॉन्शियंस, वो कह रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका।
0: दो सेकेंड और उसके बाद जब हम एक सवाल उठा रहे हैं कि प्रभु के यहाँ
2: लेट हिम कंप्लीट हिज सीनियर टू मी,
0: तो आपको मेरे साथ आना चाहिए ना कि चलिए हाँ ठीक है।
1: पर वो कह रहे हैं ना उन्होंने एसआईटी गठित कर दी है, आप 15 दिन का वेट कीजिए, योगी आदित्यनाथ ने बोला है 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप वेट कीजिए, भ्रम मत फैलाइए, डराइए मत।
0: हम तो कह रहे नहीं नहीं हम कोई भ्रम नहीं फैला रहे हैं, ये बताइए ब्रजभूषण शरण सिंह भ्रम फैला रहे हैं क्या? महंत कमलनाथ जो हाँ कमलनाथ दास जी भ्रम फैला रहे हैं क्या?
1: बताइए अमितोष पारीख, दीज आर पीपल फ्रॉम विद इन द संघ परिवार, विद इन द बीजेपी हुआ क्वेश्चन है अमितोष पारीख।
0: जिन लोगों पे आरोप लगे हैं उन पे कैसे कैसे आरोप लगे?
1: अरे आप ही बोलते रहेंगे तो उनसे हम कैसे जवाब मांगेंगे?
0: नहीं
1: अमितोष पारीख,
2: I think the freedom, yeah, Padmaja, thank you so much. I think the freedom of speech and expression and the right to have question any of the thing doesn't provide you the target with do you belong with the BJP or Samajwadi Party or Congress Party. Being a citizen of India, anyone can ask any question from anyone. That is the beauty of democracy. So I will not target and captivated into such things. But I think Samajwadi Party losing their marbles. Earlier, they were not ready to file an FIR. They were not ready to go before the courts. They were not ready to identify allegiance. They were not ready to give evidences. But now everything is being going according to the law.
0: Padmaja,
2: see, I didn't overlap it.
1: No, but Amitosh Parikh, I'm sorry. No. I think that point is gone where you can say that Samajwadi Party is losing its marbles. It's doing politics. They fired at Ram Sevaks. The fact of the matter is today, look, the uncomfortable truth is, had the Samajwadi Party not spoken about it, perhaps we would have never known what is happening. It was even after the Samajwadi picked up this issue, the first reaction came from Champat Rai and he said there is nothing wrong. It is only after the PMO sought a report that this SIT was even constituted on the request of the Ram Janmabhoomi Trust. Today you cannot say why is the opposition picking it up. They are because this is an issue that affects everyone, Amitosh Pai.
2: On the request of whom, Padmaja?
1: On the request of Janmabhoomi Trust, but initially exactly, what is Champat Rai ji said?
2: Trust, because
1: he said
2: people,
1: there is nothing wrong. Yeah. Shouldn't he have immediately gone and filed an FIR?
2: Yeah, still we're saying there's nothing wrong until the SIT get in. No, Padmaja, until the SIT provides its investigation report, we're still saying there's nothing wrong. We have trust in trust. And therefore, I believe that losing what Samajwadi Party is doing, Padmaja, is very concerned and very serious for the ideology of Sanatan. They're just using this matter for their politicalization. They are not approaching before the court. They are not giving any evidences to the SIT. Every day coming to the debates, putting out some other new points. I believe that they're having the losing lips is definitely sinking the ship. But I know one thing, that the trust has requested the government to bring in SIT, get their picture clear, get investigation, get everyone you consider to be part and parcel of the investigation. Everyone is there. And I believe that Champat Rai, the general secretary of the trust, came forward himself and gave the request to have the investigation.
1: Okay, only what last 30 seconds.
2: They have
1: Badawari,
2: no trust in the SIT. They are not approaching to the court. They are not approaching to
0: the
1: Okay, I'm unfortunately completely out of time because, you know, today we talk...
0: Rajneesh Singh, Bharatiya Janata Party ke neta, chitthi likh rahe hain, galat likh rahe hain kya? उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, वो बीजेपी के उनको भी बोल दो गलत लिख रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हैं आप।
1: ओके, यू नो आई एम आउट ऑफ टाइम टुडे, बट वी प्रॉमिस वी विल गिव यू मोर डिटेल्स एंड रीजंस व्हाई दिस कैन नॉट बी ब्रश्ड अंडर द कारपेट सिंपली एज अ पॉलिटिकल प्लॉय ऑफ द ऑपोजिशन एंड द समाजवादी पार्टी। देयर आर ग्लेयरिंग क्वेश्चंस, ग्लेयरिंग इनकंसिस्टेंसीज व्हिच आर नाउ हाइलाइटेड इन द वर्किंग, इन द मैनर इन व्हिच दीज temple donations were being treated, the kind of people who have access, why was there not an independent audit, all of these questions need to be answered for the sake of people who have faith in the

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI/UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्टियर मसाला।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
7: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
6: जिंदल स्टेनलेस, India's leading producer of stainless steel.
0: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI/UX designer, meets the talented photographer.

0: All right, we're starting this edition with extremely disappointing and disheartening news that's coming in from Lucknow, Uttar Pradesh, where this evening, massive fire broke out in a Lucknow building in Aliganj area. There were 15 people who have been killed in the fire. The building contained a gaming center, a coaching institute, and a pet clinic. The cause of the fire is yet to be determined. The Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has ordered a probe and has asked the Uttar Pradesh police and the administration to submit a report. There were dramatic visuals that we got from the scene that showed, number one, on how a man was jumping from the first-story building to save his life. There were visuals which also showed there were pets from the clinic that were being rescued. The Prime Minister has condoled the death and has announced ex gratia of 2 lakh rupees for the families of those who died in the fire.
1: बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना हुई है
2: और
1: मैं सभी परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और पूरे मामले की जांच जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा वह कराई जाएगी और इसमें यदि किसी की रिस्पांसिबिलिटी बनती है तो रिस्पांसिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी
3: 15 लोग हैं जो एक्चुअली डेड थे जब आए हैं और जो हम लोग को देखने में पता चला है कि धुएं से सफोकेशन हो गया जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में एस्फिक्सिया कहते हैं और उनका पंचनामा करके इस समय पोस्टमार्टम चल रहा है
4: बर्न पोजीशन नहीं थी एस्फिक्सिया की वजह से
3: धुएं से वो धुआं इनहेल करते करते ना आदमी की सांस बंद हो जाती है तो वो 15 लोग तो ऐसे हैं बाकी जो 7 और बच्चे हैं उनमें से 2 घायल हुए हैं और उनको हम लोग इलाज कर रहे हैं उनके एक उसमें से गंभीर घायल है क्योंकि दोनों लिम्स पैरालाइज हो गए हैं बाकी थोड़ा स्टेबल हैं
0: Now, the Uttar Pradesh Deputy Chief Minister was there at the spot when the fire broke out. He was seen crying and breaking down. Earlier, we spoke to him. His name is Brijesh Pathak, who was at the spot. Let's listen into what the minister had to say on the case.
5: उनको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है 6 बच्चे घायल हैं उनका इलाज चल रहा है घायल सभी खतरे से बाहर हैं और घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और कैसे हुई क्यों हुई इसकी रिपोर्ट आने के बाद इसमें कड़ी कार्रवाई होगी पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है हर स्थिति में उन्हें न्याय मिलेगा और हम सब यही घटनास्थल पर ही हैं ये कमर्शियल बिल्डिंग नहीं थी नीचे कुत्ते का सामान बिकता था पेट साथ था ऊपर की बिल्डिंग में ये ऊपर तल्ले पर ये एनिमेशन सेंटर चलता था कार्टून फिल्म बनाना बच्चों को सिखाते थे उसमें आग लगी है और क्योंकि उसमें बिल्डिंग में आगे के सिरे में धुआं भर गया था तो बच्चे धुएं के कारण पीछे भागे और पीछे वो धुएं के कारण बाहर निकल नहीं सके आगे क्योंकि आग ज्यादा थी तो साइड की घर से दीवार तोड़ करके फायर ब्रिगेड ने एनडीआरएफ ने घर में प्रवेश करके दूसरा रास्ता बना करके बच्चों को बाहर निकाल करके एम्बुलेंस से केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा है वहाँ पता चला है कि 14 बच्चे हताहत हुए हैं और 6 बच्चे घायल हैं। कोई भी दोषी से बचेगा नहीं कड़ी कार्रवाई होगी बहुत ही दुखद घटना है भयावह घटना है पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है कि घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है धुआं बाहर निकल रहा है फर्नीचर बाहर किया जा रहा है अभी हम लोग घटना स्थल पर ही है रिपोर्ट आने के बाद कुछ कह पाएंगे
0: And well, on to news from Maharashtra. Now it's an end

0: doesn't do anything, and he's not even going on the street to tell people, okay, I want to contest. The Congress is not nowhere to be seen, not single seat they could win today.
1: Okay, good. Yes, good point. I'm coming to you, Rohan Gupta. Let me bring in Anand Dubey on this. Anand ji, kam se kam ungli to upar karke ek do aap counter sawal to pooch lijiye. Aap to bilkul hi hathiyar dal karke baith gaye hain wahan pe. पॉलिटिक्स में शर्म की कोई जगह नहीं होती है। आपको मौका मिलता आप भी करते। शादियों में देखिए ना, आप लोग सब, अभी वीकेंड पे किसी की शादी थी,
2: आपकी
1: हाँ सब साथ में नमस्ते नमस्ते कर रहे थे।
2: नहीं ना पद्मजा जी, आपका डिबेट सुन रहा था तो मैंने गूगल पे लिखा कि दुख के समय क्या करें, तो गूगल जवाब दे रहा है, दुख के समय सबसे महत्वपूर्ण है अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, धैर्य रखें, किसी करीबी से बात करें और या प्रार्थना का सहारा लें। तो इसमें प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे ईश्वर, इस दुख से निकलने का एक हमको थोड़ा सा शक्ति दे दो, क्योंकि हम 19 में टूट गए, 22 में टूट गए, फिर 26 में टूट गए, टूटते ही जा रहे हैं। तो अब इस टूटने के बाद जुड़ना होगा, तो अब हमें जुड़ने का एक सहारा दो। हम बीजेपी को कुछ नहीं बोलेंगे, आप जो चाहती हैं मेरे मुँह से कुछ काउंटर ये वो क्या कहूँ मैं। पुलिस के पास जा रहा हूँ, पुलिस भगा दे रही है, कोर्ट में जा रहा हूँ, कोर्ट भगा दे रही है, कहीं जाने लायक बचे नहीं है। अब एक ही जगह जाएंगे 2029 में जनता की अदालत में और उनसे कहेंगे जनता जनार्दन।
1: नहीं पर आनंद जी, उसके पहले आपके सामने कई और लड़ाइयां रहेंगी। आज 17 सीटें थी, एक सेकंड, जो MLC के चुनाव थे 17 सीटें थी, 6 जो है अनकंटेस्टेड जीत गई, जो महायुति है 6 अनकंटेस्टेड जीत गई, उसमें जो बाकी बचे उनमें से 10 NDA जीती, एक एक इंडिपेंडेंट जीते, और वो इंडिपेंडेंट भी एज वी स्पीक अभी आकर के एकनाथ शिंदे जी की पार्टी में, सो कॉल्ड बीजेपी रेबल जो थे आके एकनाथ शिंदे जी की पार्टी में मिल जा रहे हैं। आप तो यू नॉट इवन पुटिंग अप अ फाइट। आज आप लड़ सकते थे ना, ठीक है वो आपकी पार्टी तोड़ रहे हैं। व्हाई डिड यू अलाउ फॉर 6 सीट्स टू गो अनकंटेस्टेड इन दिस MLC इलेक्शन? ऐसे तो नहीं चलेगा ना, आप 7 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ के साथ डील करते रहेंगे और वो लोग जीतते रहेंगे, फिर आप रोते रहेंगे।
2: ये चुनाव जनता का डायरेक्ट नहीं था, ये नगर सेवकों का, नगर पंचायतों से चुने हुए लोगों का था। इसमें धन बल चार्टर्ड विमान उड़ती है, वो जो नासिक से जीते वो चार्टर्ड विमान से आए हैं मुंबई। इतना पैसा नहीं है, पैसा समाप्त हो चुका है, विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ विपक्ष के पास एक ही चीज़ है, धीरज, धैर्य, शांति, मौन।
1: ओके, एवरीवन वांट्स टू काउंटर
0: इन द एफिडेविट बाय उद्धव ठाकरे,
1: वरुण सिंह एंड रोहन गुप्ता।
0: हाँ नहीं, आई एम सेइंग एफिडेविट जो फाइल किया था इलेक्शन कमीशन में उद्धव ठाकरे ने, उनकी खुद की पर्सनल संपत्ति 143 करोड़ थी, उनके बेटे की कुछ 23 करोड़ रुपए थी, उनके जो बाकी MLAs हैं उनके भी कई करोड़ रुपए हैं। तो पैसे मतलब मराठी में कहते हैं पैसे संपल, पैसे कहाँ चले गए? ये पार्टी में पैसे हैं, खर्च में, अगर आपको लगता है कि पैसे से ही सब कुछ हो रहा है और इलेक्शन उसी तरीके से चल रहे, तो आप क्यों पैसे बचा रहे हो? आप भी पावर में आइए, पैसे दीजिए, अगर उसी तरीके से चल रही है लोगों को बोल दीजिए कि इस तरीके से राजनीति हो रही है, भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हम पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
1: पैसे औरों को मिल रहे हैं, आनंद जी के सिर्फ दुखों का पहाड़ मिल रहा है। रोहन गुप्ता
3: देखिए, आनंद जी का चेहरा दिखा रहा है कि अब उनकी अमीर नेताओं की गरीब पार्टी बन चुकी है और बेचारे यहाँ पे बैठे हुए। उन्होंने कहा धीरज, उसके पहले आई थिंक वन ऑफ द एनालिस्ट क्लियरली सेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हिट द ग्राउंड, यू कैन नॉट जस्ट सिट इन द एसी केबिन एंड क्रीप हो कि हमारे साथ ये हो गया ये हुआ। इट्स अ बैटल, यू हैव टू गो ऑन ग्राउंड एंड कन्विंस पीपल अबाउट योर आइडियोलॉजी। 99% ऑफ देयर इलेक्टेड MPs एंड MLA कंप्लेंट दैट वी हैव नॉट बीन गिवन टाइम बाय आवर लीडरशिप, दैट्स अ कोर इशू। अनदर पॉइंट पद्मजा जी, रचित जी इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, अभी वो बात कर रहे हैं जब लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, जब DMK को कांग्रेस पार्टी ने गच्चा दे दिया तब किसी ने क्यों नहीं कहा? 5 MLA चुने, माय ब्रदर स्टेलिन थे, एक दिन के खत्म हो गया। दूसरा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव के 3 दिन पहले ममता बनर्जी के खिलाफ वीडियो रिलीज किया कि सांप्रदायिक बिहेवियर के कारण आज ये हाल हो रहा है, ममता बनर्जी पे अटैक किया, तो कहां से बनेगा इंडिया गठबंधन? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू वोट फॉर? This is the government where you attack each
1: other. We are not talking about the voting. We are talking about this switching that happens after election. Look, during elections, you go trade barbs, attack each other. After election, you have been elected on a symbol.
3: Congress giving betrayal to DMK. Is it after election or not, Padmaja ji?
1: Okay, that happened after election.
3: After election.
1: हाँ, तो शर्म की कोई जगह नहीं है, like वरुण सिंह said earlier. शर्म की कोई जगह नहीं है, राशिद किदवई.
4: पद्मजा, जो कांग्रेस ने DMK के साथ करा वो बिल्कुल शुद्ध अपॉर्चुनिज्म, अवसरवाद था, लोकतंत्र पे कलंक था। आप जो
3: राजधानी

0: उसका जो कॉलिशन धर्म का जो था उसको उसको कांग्रेस ने दरकिनार किया, वो कांग्रेस को उसकी भर्त्सना जितनी की जाए कम की जाए। लेकिन रोहन गुप्ता ये बताएं, जो पद्मजा आपने बताया था महाराष्ट्र का एमएलसी का चुनाव जो वरुण भी बात कर रहे थे, वहां आप देखिए क्या हुआ, किस तरह से बारीकी से काम हुआ है। बारीकी से काम हुआ कि 6 लोगों को जो एक राजनीतिक दल से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल में बिल्कुल जब 5 बजे समय खत्म होता है उस समय अपना पर्चा वापस ले लिया,
1: नहीं,
0: अपना पर्चा वापस ले
1: लेट
0: लिया, तब वो
1: मी
0: जीत गई होती है।
1: लेट मी क्लियर वन मोर थिंग। देयर
0: ये
1: वाज वन
0: काम जो है, ये
1: कैंडिडेट फ्रॉम
0: बारीकी का
1: एमवीए
0: काम
1: हु
0: जो है,
1: कुडंट फाइंड
0: उसको हम
1: पीपल टू
0: अंग्रेजी में कह
1: साइन,
0: सकते हैं ह्यूमन पीस ऑफ
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं
0: रैस्केलिटी,
1: था कोई।
0: ये किसने किया कैसे किया,
1: नो बट
0: इसकी तो कोई
1: व्हाई,
0: जवाबदारी
1: तो
0: होनी
1: देखिए
0: चाहिए।
1: रशिद
0: रशीद
1: भाई
0: भाई
1: आप
0: आप
1: तो
0: अगर
1: कर
0: नहीं,
1: लीजिए
0: नहीं।
1: पद्मजा, लेट मी कम इन हियर।
0: यस रोहन गुप्ता,
1: इन
0: यस
1: डेमोक्रेसी इफ यू जस्ट कंप्लेन कंप्लेन एंड कंप्लेन देन व्हाई वी विल पीपल
0: ये
1: वोट
0: देखिए,
1: फॉर यू।
0: ये देखिए,
1: आप इलेक्शन कमीशन
0: मैंने
1: की
0: तो
1: बात
0: कांग्रेस
1: करते
0: को
1: हैं,
0: कहा है,
1: कभी
0: कांग्रेस
1: आप
0: को
1: एसआईआर
0: गलत
1: की
0: किया,
1: बात करते हैं,
0: ये गलत
1: कभी
0: बात को
1: एसआईआर
0: गलत
1: के
0: बात नहीं
1: कारण चुनाव
0: ठहराते।
1: हार रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के कारण हार रहे हैं, पर
0: क्यों
1: भी चुनाव लड़ते क्यों है? आप लड़िए ना। व्हाई यू आर कंप्लेनिंग इन द चैनल, व्हाई यू आर कंप्लेनिंग इन द मीडिया? इफ यू आर कंडेमिंग कांग्रेस पार्टी फॉर डीएमके, इट मीन्स
0: क्योंकि
1: एवरीबॉडी इज वोट
0: नैतिकता की
1: वेंटिंग
0: बात
1: फॉर
0: है, इसको
1: अपॉर्चुनिटी टू
0: जस्टिफाई
1: बेटर।
0: नहीं किया जा
1: ऐसे
0: सकता
1: डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता रशिद।
0: रोहन
1: यू
0: गुप्ता,
1: कैन नॉट क्वेश्चन
0: इसको
1: अस ऑल द
0: जस्टिफाई
1: टाइम।
0: नहीं किया
1: वी
0: जा
1: आर
0: सकता।
1: विनिंग इलेक्शन बिकॉज पीपल ट्रस्ट अस, पीपल हैव फेथ इन अवर आइडियोलॉजी, दैट्स व्हाई वी आर इन इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस। इट इज
0: ओके
1: नॉट अ कोइंसिडेंट दैट
0: वरुण
1: बीजेपी
0: सिंह,
1: हैज वन सेवन सिक्स आउट
0: वरुण सिंह,
1: सेवन
0: इट वाज
1: इलेक्शन आफ्टर
0: मैनेज्ड, इवन दिस
1: लोकसभा।
0: इलेक्शन वाज मैनेज्ड, वरुण सिंह।
1: लेट मी टेल यू अ सिंपल थिंग पद्मजा, यर देयर आर कैंडिडेट्स फ्रॉम द एमवीए हु कुडंट इवन फाइंड पीपल टू स्पॉन्सर देम, मतलब साइन जो करते हैं सिग्नेटरी, दैट वाज द केस। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई गिव यू एन एग्जांपल, 100 कॉर्पोरेटर्स फ्रॉम कांग्रेस कुडंट एंड द कैंडिडेट फ्रॉम कांग्रेस गॉट वोट, जीरो वोट्स। सो यू नो ब्लेमिंग द ऑपोजिशन और ब्लेमिंग द पार्टी हु इज देयर इन द रूलिंग अलायंस ओवर हियर, आई डोंट नो टुडे द शिवसेना कैंडिडेट एकनाथ शिंदे कैंडिडेट लॉस्ट इन नासिक। इट इज स्मार्ट मैन्युवरिंग, इट इज बीइंग सेड दैट इट वाज स्मार्ट मैन्युवरिंग बाय देवेंद्र फडणवीस दैट ही मेड अ रेबल कैंडिडेट कंटेस्ट ओवर देयर एंड ही वन एंड ही डिफीटेड समवन हुज ब्रदर हिमसेल्फ इज एन एमएलसी ओवर देयर फ्रॉम एकनाथ शिंदे
0: And then it was smart maneuvering by
1: कॉन्स्टिट्यूएंसी।
0: Eknath Shinde that he got that BJP rebel to join his party.
1: But let me tell you a very simple thing, that BJP rebel will be joining the Shiv Sena only and only if he gets a go-ahead from the high command over here in Maharashtra. NCP Thackeray was a BJP fellow who went in Pune and is now an MLC. You know, blame the ruling alliance. That is the best thing one should do.
0: But you
1: And
0: know,
1: as
0: one
1: long
0: thing I
1: as
0: have to point out, the number one conspiracy theory, and this is where I want to bring in Rashid Kidwai, fine. Yes, the BJP, the NDA, they are now almost working like a juggernaut, and anything that stands in the way is going to be demolished unless they put up a fight. The point is, for example, Sanjay Raut had said that Om Raje Nimbalkar has agreed to join the NDA only if he gets a favorable verdict in his father's case. That favorable verdict did not happen. He received a setback from the special CBI court, and yet he has joined, which makes one ask, somehow, perhaps all of these conspiracy theories are also being floated because it's convenient. It's convenient to blame others. Om Raja Nimbalkar is still with Eknath Shinde. Absolutely. So the opposition is clumsy. Opposition has leadership problem. Opposition has a dynasty rule, and that is eating the vitals of inner party democracy in a lot of political parties, including the Congress. I'm saying it for the benefit of Mr. Rohan Gupta, who thinks that, you know, I would plug a pro-Congress line. But having said this, see why this is being, why 360, why this kind of MPs are being bought, matlab thok ke bhav mein kyon kharide ja rahe hain? Is there some kind of change of guard is taking place in Maharashtra at the center, or some kind of big, you know, thing is happening? Therefore, you need a constitutional amendment to do this. It cannot be just for delimitation bill. Is there some kind of political, you know, thing that happening that we will see it in 2027? These
1: okay.
0: are the things that need to be answered. Okay, and ultimately, yes, you are absolutely right. These questions need to be answered. But the NDA, the BJP's argument is that it will be answered in the people's court when we go to the people in elections. But I want to end with a final visual, because very interesting picture came today from the assembly where Rohit Pawar, Varun Singh, maybe you'd want to dwell on it for like 30 seconds before I thank you. Rohit Pawar and Eknath Shinde having a chat. I don't think Uddhav ji is going to be very happy with this picture. What was this conversation they were having?
1: I don't know. He probably was thanking for him visiting his niece's, his sister's wedding yesterday at BKC. Probably that could be one thing. But I don't want to get into the details what they were talking because I don't know what they were. But as I said, Rajneeti mein sharm ki jagah nahi hai, ideology ki jagah politicians ke liye nahi hai. And the only most important thing over here is if Uddhav Thackeray today wants his party to survive, then if not him, then Aditya Thackeray needs to hit the streets. He is to theek thak bhai. 34-35 साल का लड़का निकल जाए लोगों से मिले एंड सुनील शिंदे व्हाटएवर हैपेंस इज नॉट गोइंग टू लीव हिम बिकॉज़ सुनील शिंदे इज हिज वेरी क्लोज फ्रेंड क्लोज एट ही लेफ्ट हिज सीट फॉर आदित्य ठाकरे सो एंड संजय पोटनिस आल्सो वोंट लीव हिम बिकॉज़ दे आर यू नो दीज आर द सीट्स वेयर यूबीटी हैज दिस पर्टिकुलर बेस सो दीज टू पीपल माइट नॉट लीव हिम रेस्ट ऑल आई डोंट नो पूरे के पूरे लोग निकल भी सकते हैं
0: एक महीने पहले हम फिराद हकीम के बारे में भी यही कह रहे थे बट एनीवे लेट्स होप ऑल ऑफ दीस पीपल
2: की जगह होनी चाहिए हर चीज को अगर शादी में लोग मिल रहे हैं तो ये स्वागत योग्य बात है इसको कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए ये तो शिष्टाचार
1: आपत्ति नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं रशीद जी आप मैं और रोहन और आनंद दुबे यहां लड़ेंगे कहेंगे कि नहीं आइडियोलॉजी होनी चाहिए और ये सारे नेता वहां पर जाके हाथ मिला के
2: शादी ब्याह में मिल रहे तो भारतीय सभ्यता का अंग है इसमें क्या बुराई है
0: नहीं कोई बुराई नहीं है बट आनंद दुबे आई वॉन्ट टू लीव यू विद दीज पिक्चर्स आपके क्योंकि दुख खत्म ही नहीं हो रहे एक बार नजर उठा के टीवी देख लीजिए रोहित पवार और एकनाथ शिंदे भी वहां पर गुफ्तगु कर रहे हैं लेट्स होप ये सिर्फ बीकेसी की बातें ही चल रही हैं कि शादी कितनी अच्छी थी इंतजाम कितने अच्छे थे सिर्फ इतने तक ही लिमिटेड है ये कॉन्वर्सेशन बट सीरियस थॉट नीड्स टू बी गिवन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू इफ पीपल अप्रूव वेल वी विल सी इट इन द पीपल्स कोर्ट थैंक्स वेरी मच जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस बिग स्टोरी द अदर बिग स्टोरी दैट वी आर ट्रैकिंग ऑन द शो टुडे वॉज द डोनेशन given at the Ram Mandir in Ayodhya stolen? And if yes, then by who? This is a question that lakhs and crores of believers and Hindus across the globe are asking today. But how soon can one expect answers? Because this is a controversy that threatens to not just be a major embarrassment for the temple administration, but also a political ticking time bomb. The SIT set up by the UP government to probe this alleged theft may hand over its interim report this week to the Chief Minister. Meanwhile, a PIL on the issue has also been filed before the Allahabad High Court, but the court refused to grant urgent hearing on that today. The focus is now squarely on the working of the Temple Trust. Three main things that the SIT is looking at. On what basis were the hirings done of the people who worked there, especially those who were involved in counting the cash? Were people vetted properly before giving them access to the donations? What was the process to assess the value of the jewelry and valuables that were given as chadhava? Is there a possibility that their actual worth, the worth of the jewelry that's given, was underreported in temple records and the balance was siphoned off? And finally, the background and net worth of relatives of the people who are under the scanner. That background is also being scrutinized to check whether they suddenly seem to have come into wealth. Could the proceeds from the temple have been diverted to the relatives of those involved in the counting process? Be that as it may, the politics over this alleged theft is now peaking. The entire opposition has called it the biggest fraud perpetrated on Sanatanis across the world. The Samajwadi Party has trained its guns on Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, and Arvind Kejriwal has now vowed to visit the Ram Mandir this Friday in protest. While the BJP may brush this aside as an attempt to divide Hindus, the question still remains, is there any truth in allegations of theft from the Ram Mandir in Ayodhya? And if yes, who is going to be held responsible?
3: Sarkar ne SIT zarur banayi hai. लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे ये भी एक सवाल है बड़ा सीसीटीवी के फुटेज गायब है जो खबरें आ रही हैं आप ही लोग दिखा रहे हो ये साबित कर दिया है धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है और सनातन परंपरा को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाना कोई कल्पना नहीं कर सकता हमें उम्मीद है ಸಚ್ಚಾಯಿ ಸಾಮನೆ ಆಯ್ಗಿ
4: ಈಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 5,000 crore ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ರಿಪೋರ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪೂಜಾರಿನೇ ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮ ನಾಮ ಜಪೋ ಪರಾಯ ಮಾಲ್ ಅಪ್ನಾ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ರೋಟಿ ಮಾಡಕ್ ನೀವು ದೇವರ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾರ ಕೈಲಿಂದ ಆಗಿದೆ मोदी और कहीं
5: भगवान के घर चोरी हुई है, भगवान के घर की चोरी और डकैती जो है निश्चित रूप से खुलनी चाहिए, लोगों की आस्था के ऊपर चोट है, ये सरकार की माया है, ये सरकार जाने ये क्या कर रहे हैं और एसआईटी के क्या मायने हैं बिना एफआईआर के, उसका कानूनी पहलू क्या है ये तो वही बता सकते हैं, इससे पहले कोई नहीं बता सकता है।
6: वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके दल के इशारे पर कार्यसेवकों पर गोली चली थी कि जिनके पास कोई सबूत है तो तथ्यों के साथ में वो एसआईटी के सामने प्रस्तुत करें, उनके आरोप पर कोई आपत्ति नहीं, आरोप लगाना उनका अगर उनके पास कुछ है तो वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर लगा रहे हैं तो जो कुछ उनके पास आरोप के पीछे तथ्य है उसको प्रस्तुत करना चाहिए।
0: अनुराग भदौरिया फ्रॉम समाजवादी पार्टी जॉइंस अस, बट माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू अमितोष पारीक ऑफ द विश्व हिंदू परिषद, हाउ कुड दिस हैपन अंडर द नोज ऑफ सो मेनी सीनियर पीपल? अमितोष पारीक,
7: थैंक यू पद्मजा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टार्टिंग विद मी। वेल, इट्स अ वेरी हार्ड टाइम एंड इट्स अ करेजियस टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड राम हु हैव गिवन देयर बॉडीज, देयर लाइफ, देयर सोल्स, देयर ड्रीम्स टू ब्रिंग राम फ्रॉम टेंट टू टेम्पल। And I believe this will time also pass with the proper SIT report after the investigation of 15 days with harsh in nuts, from soup to nuts, from neck to cranny. But the, despite of the fact, discussing and questioning and showing the distrust on the SIT, they are putting allegations, which is not a new thing. The questions and the allegations which has been made by the parties, as it's 9 out of 10 times that we have seen from the past and history, allegations have been made. I believe there are 6 points, Padmaja, 6 points which I need to cover. The first point is, till date, no FIR, no complaint have been filed by those people who alleged to have sources of information subject to the crime, if happened, despite the SIT information have not revealed the same right now. Second, they are not parties to the cases, neither in Supreme Court nor in Allahabad Court. Third, they are crying their chest out the SIT formation was wrong, illegal, misuse of the law, despite of the fact they have not challenged the SIT formation. Fourth, and the fifth, till date, they have not submitted any evidence before the SIT which proves that any crime alleged. And if I say if any crime alleged till the SIT report came into the picture and till the SIT completes its investigation. I believe it's a harsh time, a bane of our existence, but we should wait for the SIT to get it investigated.
0: Why aren't you filing an FIR? Why aren't you filing an FIR? You are responsible for taking care of all the donations. If this money has been siphoned off, why aren't you filing an FIR?
7: Yeah. Okay, fair enough, Padmaja. This is a very technical point and thank you for bringing this point to me. Two things. The first thing is the allegations made by the Samajwadi Party president. In evening, one of their leaders denied the same, having no source of information and saying it's just a rumor, and we built it to the Twitter. Second of the day, the trust came forward and gave the explanation subject to the audit and everything which was time past the deal. Third, the trust came before, request the government to prove to get an investigation done, to create an SIT and to have an unbiased investigation. The FIR was not been framed till date because there was no evidences brought by any of the allegers before the government on which the allegations prove and the FIR to be framed.
0: If okay, let me ask Anurag Bhadauria. आपने इतने इल्जाम लगाए हैं, आपने ना कोई सबूत दिया है ना आपने FIR कराया है, अनुराग भदौरिया
8: जी, देखिए कमाल की बात है, प्रभु के मंदिर में उनके दान पात्र में चोरी का मामला है, समाजवादी पार्टी ने उठाया तो ये हल्ला मचाने लगे। जब इनको, अगर आपको लगता था सब कुछ ठीक है तो महंत कमलनाथ दास जी क्यों बोल रहे थे कि यहाँ सब के सब बेईमान हैं, यहाँ सच सामने नहीं आएगा, इनकी जांच भगवान करेंगे। क्यों वहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे थे कि भाई ये बड़े लोग हैं, मैं सच नहीं बोल पाऊंगा, बहुत बड़े लोग हैं। उसके बाद लगातार एसआईटी की जो जांच हो रही है उसमें कुछ कुछ जैसे सामने आ रहा है कि एसबीआई बैंक, उन्होंने थर्ड पार्टी को पैसे गिनने के लिए लगाया हुआ था, एसबीआई बैंक की जिम्मेदारी थी और लगाया किसको, थर्ड पार्टी को। जांच में खामियां पाई गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बार बार नोट को जहां पे कच्छ तक ले जाने के बीच में भी खामियां पाई गई हैं और बार बार रिपोर्ट आ रही है कि सीसी कैमरे भी बंद किए गए थे। अब सवाल उठता है एसआईटी के ऊपर, तो ये है कि कुंभ के ऊपर एसआईटी गठित हुई थी ना, तो क्या कुंभ के जब भगदड़ हुई थी उस पर एसआईटी बनी थी? एसआईटी की रिपोर्ट आ गई क्या? करीब 1.5 साल हो गया, अगर आ गई तो अभी बता के जाइएगा कि एसआईटी की रिपोर्ट आ गई। सवाल उठता है कि आपने, आप जब हम पूछते हैं कि आप, हम लोग प्रभु का मानने वाले लोग हैं, प्रभु के आदर्श शासन पे चलने वाले लोग हैं, अगर वहां गड़बड़ी हुई है तो जांच कराने की मारे सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में जांच करवानी चाहिए थी, एक बात। दूसरी बात, आप कहते हो कि नहीं नहीं हम लोग, देखिए दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी डिबेट में नहीं आ रही है। जो प्रभु राम की बात करती थी, आज प्रभु के राम के पे घर पे चोरी के संबंध में बात करने के लिए टीवी पे आई नहीं रही है। चेहरा वो सामने फेस नहीं कर पा रहे हैं हम लोगों को। क्यों नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी? पाक साफ है तो आइए सामने बोलिए कि जो समाजवादी पार्टी कह रही है, आइए मिलके हम लोग सब लोग जांच कराते हैं। सच का दूध पानी का पानी हो जाए भाई। हम जो कह रहे हैं आइए मेरे साथ मिलके, प्रभु के चोरी की बात है ना, तो उसमें

0: All right, we're starting this edition with extremely disappointing and disheartening news that's coming in from Lucknow, Uttar Pradesh, where this evening, massive fire broke out in a Lucknow building in Aliganj area. There were 15 people who have been killed in the fire. The building contained a gaming center, a coaching institute, and a pet clinic. The cause of the fire is yet to be determined. The Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has ordered a probe and has asked the Uttar Pradesh police and the administration to submit a report. There were dramatic visuals that we got from the scene that showed, number one, on how a man was jumping from the first-story building to save his life. There were visuals which also showed there were pets from the clinic that were being rescued. The Prime Minister has condoled the death and has announced ex gratia of 2 lakh rupees for the families of those who died in the fire.
1: बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना हुई है
2: इस मौके पर 15 लोगों की जान चली गई
1: और मैं सभी परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और पूरे मामले की जांच जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा वह कराई जाएगी और इसमें यदि किसी की रिस्पांसिबिलिटी बनती है तो रिस्पांसिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी
3: 15 लोग हैं जो एक्चुअली डेड थे जब आए हैं और जो हम लोग को देखने में पता चला है कि धुएं से सफोकेशन हो गया जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में एस्फिक्सिया कहते हैं और उनका पंचनामा करके इस समय पोस्टमार्टम चल रहा है
4: बर्न पोजीशन नहीं थी एस्फिक्सिया की वजह से
3: धुएं से वो धुआं इनहेल करते करते ना आदमी की सांस बंद हो जाती है तो वो 15 लोग तो ऐसे हैं बाकी जो 7 और बच्चे हैं उनमें से 2 घायल हुए हैं और उनको हम लोग इलाज कर रहे हैं उनके एक उसमें से गंभीर घायल है क्योंकि दोनों लिम्स पैरालाइज हो गई हैं बाकी थोड़ा स्टेबल हैं
0: Now the Uttar Pradesh Deputy Chief Minister was there at the spot when the fire broke out. He was seen crying and breaking down. Earlier, we spoke to him. His name is Brijesh Pathak, who was at the spot. Let's listen into what the minister had to say on the case.
5: उनको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है 6 बच्चे घायल हैं उनका इलाज चल रहा है घायल सभी खतरे से बाहर हैं और घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और कैसे हुई क्यों हुई इसकी रिपोर्ट आने के बाद इसमें कड़ी कार्रवाई होगी पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है हर स्थिति में उन्हें न्याय मिलेगा और हम सब यही घटनास्थल पर ही है ये कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं थी नीचे कुत्ते का सामान बिकता था पेट साथ था ऊपर की बिल्डिंग में ये ऊपर तल्ले पर ये एनिमेशन सेंटर चलता था कार्टून फिल्म बनाना बच्चों को सिखाते थे उसमें आग लगी है और क्योंकि उसमें बिल्डिंग में आगे के सिरे में धुआं भर गया था तो बच्चे धुएं के कारण पीछे भागे और पीछे वो धुएं के कारण बाहर निकल नहीं सके आगे क्योंकि आग ज्यादा थी तो साइड की घर से दीवार तोड़ करके फायर ब्रिगेड ने एनडीआरएफ ने घर में प्रवेश करके दूसरा रास्ता बना करके बच्चों को बाहर निकाल करके एम्बुलेंस से केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा है वहाँ पता चला है कि 14 बच्चे हताहत हुए हैं और 6 बच्चे घायल हैं। कोई भी दोषी से बचेगा नहीं कड़ी कार्रवाई होगी बहुत ही दुखद घटना है भयावह घटना है पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है कि घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है धुआं बाहर निकल रहा है फर्नीचर बाहर किया जा रहा है अभी हम लोग घटना स्थल पर ही है रिपोर्ट आने के बाद कुछ कह पाएंगे
0: And well, on to news from Maharashtra now. It's an end to all the speculations and buzz in Maharashtra politics. It is a big boost to Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde. 6 out of the 9 Lok Sabha MPs from Team Uddhav Thackeray have joined the Eknath

0: back for the families of those who died in the fire.
1: लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है, वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां
2: 15 लोग हैं जो एक्चुअली डेड थे जब आए हैं, और जो हम लोग को देखने में पता चला है कि धुएं से सफोकेशन हो गया, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में एस्फिक्सिया कहते हैं, और उनका पंचनामा करके इस समय पोस्टमार्टम चल रहा है।
3: बर्न पोजीशन नहीं थी, एस्फिक्सिया की वजह से,
2: धुएं से, वो धुआं इनहेल करते करते ना आदमी की सांस बंद हो जाती है। तो वो 15 लोग तो ऐसे हैं, बाकी जो 7 और बच्चे हैं उनमें से 2 घायल हुए हैं और उनको हम लोग इलाज कर रहे हैं उनके। एक उसमें से गंभीर घायल है क्योंकि दोनों लिम्स पैरालाइज हो गई हैं, बाकी थोड़ा स्टेबल हैं।
0: All right, let's now tell you all that we know so far when it comes to the Lucknow fire tragedy. First up, this fire broke out at a coaching center in Lucknow's Aliganj earlier this evening. Second, so far 15 people have been killed in the inferno. Now, this building, we told you that it only had residential permission, but it started using it as a commercial building. The third aspect is that the building housed a gaming hub and even a pet clinic, apart from being a coaching hub as well. Reports are also telling us that there was no fire safety NOC in this building. Apart from that, no fire exit as well. All routes were blocked, and that is why the rescue operation had to take place after breaking all those walls. Sources also telling us that the fire may have been caused through short circuit, but as we speak, an SIT team has been formed and the causes of the fire is still to be ascertained. Apart from that, a rupees 5 lakh ex gratia has been announced by the UP Chief Minister, and the Prime Minister also announced rupees 2 lakh ex gratia to those who have died in this inferno. All right, earlier I spoke with the UP Deputy Chief Minister Brajesh Pathak, who was at the spot. Take a listen to what he had to say on this tragedy.
4: अभी बच्चे आहत हुए हैं, उनको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है। 6 बच्चे घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। घायल सभी खतरे से बाहर हैं और घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, और कैसे हुई, क्यों हुई, इसकी रिपोर्ट आने के बाद इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, हर स्थिति में उन्हें न्याय मिलेगा, और हम सब यही घटनास्थल पर ही हैं। ये कमर्शियल बिल्डिंग नहीं थी, नीचे कुत्ते का सामान बिकता था, पेट साथ था। ऊपर की बिल्डिंग में ये ऊपर तलने पर ये एनिमेशन सेंटर चलता था, कार्टून फिल्म बनाना बच्चों को सिखाते थे, उसमें आग लगी है। और चूंकि उसमें बिल्डिंग में आगे के हिस्से में धुआं भर गया था, तो बच्चे धुएं के कारण पीछे भागे और पीछे वो धुएं के कारण बाहर निकल नहीं सके। आगे चूंकि आग ज्यादा थी, तो साइड की घर से दीवार तोड़ करके फायर ब्रिगेड ने, एनडीआरएफ ने घर में प्रवेश करके दूसरा रास्ता बना करके बच्चों को बाहर निकाल करके एम्बुलेंस से केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा है। वहाँ पता चला है कि 14 बच्चे हताहत हुए हैं और 6 बच्चे घायल हैं। कोई भी दोषी से बचेगा नहीं, कड़ी कार्रवाई होगी। बहुत ही दुखद घटना है, भयावह घटना है। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है कि घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। और घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, धुआं बाहर निकल रहा है, फर्नीचर बाहर किया जा रहा है। अभी हम लोग घटना स्थल पर ही हैं, रिपोर्ट आने के बाद कुछ कह पाएंगे।
0: What are the big questions? Because 15 people have lost their lives in this inferno. First up, of course, why was there no designated fire exit? There was no fire exit due to which people were trapped inside that building. Second, were portable fire extinguishers in place or not? Apart from that, were fire detection and alarm systems installed in place.

0: संवेदना व्यक्त करता हूँ और पूरे मामले की जांच जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा वो कराई जाएगी और इसमें यदि किसी की रिस्पांसिबिलिटी बनती है तो रिस्पांसिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी।
1: 15 लोग हैं जो एक्चुअली डेड थे जब आए हैं और जो हम लोग को देखने में पता चला है कि धुएं से सफोकेशन हो गया, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में एस्फिक्सिया कहते हैं, और उनका पंचनामा करके इस समय पोस्टमार्टम चल रहा है।
2: बर्न पोजीशन नहीं थी, एस्फिक्सिया की वजह से,
1: धुएं से, वो धुआं इनहेल करते करते ना आदमी की सांस बंद हो जाती है। तो वो 15 लोग तो ऐसे हैं, बाकी जो 7 और बच्चे हैं उनमें से 2 घायल हुए हैं और उनको हम लोग इलाज कर रहे हैं उनके। एक उसमें से गंभीर घायल है क्योंकि दोनों लिम्स पैरालाइज हो गई हैं, बाकी थोड़ा स्टेबल हैं।
3: Now, the Uttar Pradesh Deputy Chief Minister was there at the spot when the fire broke out. He was seen crying and breaking down. Earlier, we spoke to him. His name is Brijesh Pathak, who was at the spot. Let's listen into what the minister had to say on the case.
4: 15 से अधिक बच्चे आहत हुए हैं, उनको KGMC ट्रामा सेंटर भेजा गया है। 6 बच्चे घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। घायल सभी खतरे से बाहर हैं और घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और कैसे हुई, क्यों हुई, इसकी रिपोर्ट आने के बाद इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, हर स्थिति में उन्हें न्याय मिलेगा और हम सब यही घटनास्थल पर ही हैं। ये कमर्शियल बिल्डिंग नहीं थी, नीचे कुत्ते का सामान बिकता था, पेट साथ था। ऊपर की बिल्डिंग में ये ऊपर तल्ले पर ये एनिमेशन सेंटर चलता था, कार्टून फिल्म बनाना बच्चों को सिखाते थे। उसमें आग लगी है और चूंकि उसमें बिल्डिंग में आगे के सिरे में धुआं भर गया था तो बच्चे धुएं के कारण पीछे भागे और पीछे वो धुएं के कारण बाहर निकल नहीं सके। आगे चूंकि आग ज्यादा थी तो साइड की घर से दीवार तोड़ करके फायर ब्रिगेड ने, NDRF ने घर में प्रवेश करके दूसरा रास्ता बना करके बच्चों को बाहर निकाल करके एम्बुलेंस से KGMC ट्रामा सेंटर भेजा है। वहां पता चला है कि 14 बच्चे हताहत हुए हैं और 6 बच्चे घायल हैं। कोई भी दोषी से बचेगा नहीं, कड़ी कार्रवाई होगी। बहुत ही दुखद घटना है, भयावह घटना है। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है कि घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, धुआं बाहर निकल रहा है, फर्नीचर बाहर किया जा रहा है। अभी हम लोग घटना स्थल पर ही हैं, रिपोर्ट आने के बाद कुछ कह पाएंगे।
3: And well, on to news from Maharashtra now. It's an end to all the speculations and buzz in Maharashtra politics. It is a big boost to Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde. 6 out of the 9 Lok Sabha MPs from Team Uddhav Thackeray have joined the Eknath Shinde-led Shiv Sena in Mumbai. Addressing a press conference this evening, Eknath Shinde said, and I quote, "The 6 tigers are here. They have now all joined the real Shiv Sena family and I welcome them to the real Shiv Sena." There were 6 MPs who have jumped the ship are Om Raje Nibalkar, Sanjay Patil, Sanjay Jadhav, Sanjay Deshmukh, Nagesh Patil and others as well. Here is what Eknath Shinde said when he addressed the press conference earlier this evening.
5: Operation Tiger success. 2022 mein pehle operation hua tha. 2022 ke baad 40 MLA shuruaat mein the. Aaj हमारे 6 खासदार साथ में आए हैं, क्रिकेट में क्या कहते हैं, षटकार, सिक्सर। ये जो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, ये स्वार्थ के लिए गए, इनके लिए गए, उसके लिए गए, कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अभी जब उनके पास थे तो सब अच्छे थे, मैं भी था, अच्छा था। मैं जब बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए गया तो बुरा हो गया। अभी ये सब लोग क्यों जा रहे हैं, इसका आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण करना चाहिए, न कि जो जाते हैं उनको दोष देवे। सुबह गाली देते हैं और शाम को बोलते हैं अच्छे अच्छे, ये भी करके देखा उन्होंने। लेकिन ये केमिकल लोचा वाले लोग हैं।
3: Three students in Karnataka were late for their re-NEET exam.